एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। श्रोताओ, सुबह के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाश
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

परमात्मा के प्यार में रंगा हुआ हमारा मन जैसे जैसे परमात्मा का गुणगान करता है, वैसे वैसे हमारे मन में वह परमात्मा और बसते जाते हैं। परमात्मा के गुण गाना मानो एक सीढ़ी के समान है और इस सीढ़ी के द्वारा सदस्थिर रहने वाले परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जो मनुष्य इस सीढ़ी की बरकत से आत्मिक आनंद और अडोलता में पहुंचता है, वह सदा स्थिर प्रभु को प्यारा लगता है। परमात्मा के गुण गाने से हमारी मति अटल हो जाती है। अगर परमात्मा का ध्यान सुमिरन करने से मति सही नहीं हुई तो कोई तीर्थ स्नान परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रभु का चिंतन मनन करने से मनुष्य के मन से धोखा, फरेब, छल और मोह सब समाप्त हो जाते हैं। फिर उस मनुष्य के अंदर ना छल रह जाता है ना फरेब, केवल उस परम ज्योत के आनंद में मन डूबा रहता है।

भगवान ही सारी सृष्टि के निर्माता और पालन करता है, क्योंकि वो जो सोचते हैं वही होता है। हम सब जीव तो मात्र कठपुतलियाँ हैं जो उनके इशारे पर नाचती हैं। उन्होंने अच्छे कर्म करने के लिए हमें इस संसार में भेजा है, ताकि कुछ अच्छा करके अपने जीवन को हम संवार सकें। लेकिन ये तो जीवों पर निर्भर करता है, उसे क्या करना है क्या नहीं। जो सही राह चुनते हैं उन पर प्रभु कृपा बनी रहती है, क्योंकि ऐसी जीवात्माओं के अंग संग हमेशा प्रभु का सुरक्षा कवच बना रहता है।

हमें जीवन में ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए जिसको करने के बाद हमें जीवन भर पछतावा रहे, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। जीवन मुट्ठी में रखी हुई उस रेत की तरह है जो पल पल फिसलती जा रही है, और उस मुट्ठी को हम जितना बांधते हैं रेत उतनी ही फिसलती जाती है। प्रभु के नाम की गांठ जीवन में बांधने से जीवन भवसागर से पार लग जाता है। यही जीवन का सच्चा धन है।

दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से भक्तिमय पाठ।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना और आज आपने सुना भाग 125। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहाने। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभ प्रयाग। समाचार प्रभा सुबह 8:00 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम गाने सुहाने का। 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी। सुबह 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि पेश किया जाएगा।

0: सुबह 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी गीत 9:30 से 10 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे। गीतों का कारवां इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे सुबह 10 बजे। पहाड़ों के सुर हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनिएगा सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11 बजे प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर कार्यक्रम महक पंजाब दी सुनवाया जाएगा। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनो सखी, महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के बाद 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5 बजे तक। और शाम 5 बजे समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5 बजे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नई उड़ान। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजें गरेंदियां कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। शाम 7 बजे के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सात बजकर 10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8 बजे सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार, और आज के संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी। 9:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। रात 10 बजे सुनिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः INS दुनागिरिः, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तीन उक्तम यत एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सांप्रतिक वर्षस्य अंतरराष्ट्रीय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमंत्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रीय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रीय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रीय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+2000 पुनर्परीक्षा सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसंपन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+4500 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्था अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति, केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 जनाः मृताः, 77 श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा 3-सदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र 2-2 अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है।

0: नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. In his address after commissioning 3 indigenously built naval ships in Kolkata, Mr. Modi said India does not want to remain only a buyer country in the defence sector, and the nation's armed forces cannot become just a market for the world. The Prime Minister commissioned indigenously built stealth frigate Dunagiri, survey vessel Sanshodhak and anti-submarine warfare shallow water craft Agra yesterday. Mr. Modi said India's journey from INS Vikrant to this date is not just about new warships but towards increasing self-reliance.
0: INS Vikrant se lekar aaj tak ki yatra keval naye yuddhapoton ki yatra nahi hai.

सुबह का मतलब सिर्फ सूर्योदय नहीं होता, बल्कि ये प्रकृति की वो खूबसूरत सी रचना है जिसमें सारा संसार रात रूपी अंधकार से सुबह की उजली किरण के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। ये हमें ये बताता है कि जीवन का चक्र किस तरह से हर रोज चलता है। तो आप सब से बतियाने के लिए, बातचीत करने के लिए इस प्रोग्राम में हम पहुंच चुके हैं। आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पवन शर्मा के साथ।

0: 103.4 MHz इस वक्त आपने ट्यून इन किया है। ये है वो जानी मानी सी फ्रिक्वेंसी जिस पर आप मिलते हैं हमसे हर रोज। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक विचार के साथ।
1: आज का विचार,
0: प्रेम रिश्तों की नींव है, विश्वास उसकी मजबूती और सम्मान उसकी सुंदरता। ये तो था आज का विचार और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम इस मीठे से गीत के साथ।

भोजन को बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। तो ये जितने भी पेड़ पौधे ये हमारे लिए हैं, ये जीवनदायक हवा, फल फूल, औषधियाँ, भोजन हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या हम कभी इनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाते हैं? वर्षावन बचाइए, पृथ्वी बचाइए। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं विश्व वर्षावन दिवस, जो हर साल 22 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वर्षा वनों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए उन्हें प्रेरित करना है। वर्षावन पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। ये विश्व की लगभग आधी वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों का घर है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। दुर्भाग्यवश वनों की कटाई, खनन, कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण वर्षा वनों का क्षेत्र लगातार घट रहा है, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो श्रोतो, ये हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और किस तरह से हमने प्रकृति की सुरक्षा करनी है। जिस तरह प्रकृति हमें पाल पोस कर अपना दायित्व निभा रही है, उस तरह हमारा भी दायित्व ये बनता है कि हम भी उसकी सुरक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं, अपनी पृथ्वी को, अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाएं।

7:23, आपने ट्यून इन किया है 103.4 MHz। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह सुहानी। श्रोता, जब हम सिनेमा देखते हैं तो हीरो या हीरोइन की एक्टिंग से हम प्रभावित होते हैं। फिल्म में सारी कहानी अभिनेता या अभिनेत्री यानी हीरो या हीरोइन की लाइफ हिस्ट्री के आसपास ही घूमती है। ज़्यादातर प्रभाव सभी लोगों पर उन्हीं के किरदार का पड़ता है, लेकिन उन्हीं किरदारों के बीच एक होता है खलनायक, जो फिल्म में नेगेटिव रोल में होता है। ऐसे ही महान नायक मोगैम्बो खुश हुआ, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, उनकी बात आज हम आपसे करेंगे। जी हाँ, आज बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध सुपरस्टार किंग ऑफ नेगेटिव रोल अमरीश पुरी का जन्मदिवस है, जिनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब जालंधर में हुआ। वे प्रसिद्ध अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अमरीश पुरी ने लगभग 4 दशकों के करियर में 450 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने 40 साल की उम्र में 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने स्टीवन स्लीवर की ऑस्कर विजेता फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड टेंपल ऑफ डूम 1984 में खलनायक मौला राम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई भूमिका निभाई। मिस्टर इंडिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, घातक, दामिनी, गदर एक प्रेम कथा और ना जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं। और उन्हीं की एक अभिनीत फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, चलिए सुनते हैं।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अब बात करेंगे आज विशेष की। सन 2005 में पूरा इराक विश्व धरोहर की सूची में आज ही के दिन शामिल किया गया। सन 2006 में अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। सन 2007 में सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ धरती पर आज ही के दिन लौटी थी। सन 2016 में इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, लॉन्च किए 20 उपग्रह। भदंत आनंद कोत्स्यायन, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, समाज सुधारक, लेखक और पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान सन 1988 को आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह गए। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्यधारा में से एक प्रमुख कवि सन 2000 में आज ही के दिन हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय सिनेमा के सफल फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता एलवी प्रसाद 1994 को दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज के दिन पैदा हुई हस्तियों की बात अगर हम करें तो गणेश घोष, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सन 1900 के दिन आज ही के दिन उनका जन्मदिवस है और आज ही के दिन वो पैदा हुए। और खलनायक अमरीश पुरी की बात तो हम आपके साथ कर चुके हैं क्योंकि उनका भी आज ही जन्मदिवस है।

सुबह सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब आज के समाचार आपको सुनवाते हैं।

0: खबर आज की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया। भारत में हुए हालिया घटनाक्रमों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और आंतरिक मामलों पर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, भारत अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत कर रहा है और सागरमाला अभियान इसी का हिस्सा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। और अब जानकारी मौसम की। देश के कई हिस्से में मॉनसून सक्रिय। भारतीय मौसम विभाग ने 12 राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों में भारी वर्षा की संभावना।

0: सुबह सुहानी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

शुपया कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत इस कार्यक्रम में, और हिमाचली गीत और लोक संगीत लेकर हम बिल्कुल उपस्थित हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बंसी भारद्वाज, लेखराम पाल और मदन गौतम की मिली जुली आवाज़ों में गाए इस लोकगीत के साथ।

नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम। अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
4: हिमाचली गीत और लोक संगीत से सजा कार्यक्रम शुभ प्रयाग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए श्रुति कपूर को।

पीछे पीछे लांदी है मन भरमांदी है जाला फसांदी है सड़क ऐप गोरी है मोटर चलांदी है मोटर चलांदी है सड़क ऐप गोरी है मोटर चलांदी है।

0: अभी आप सुन रहे थे देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगी।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार

0: नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
5: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
6: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
7: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
8: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
9: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम कैपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
0: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा

वर्ष 1991 में आई प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म हिना का यह खूबसूरत सा लोकप्रिय सदाबहार गीत अभी आपने सुना। गायक थी लता मंगेशकर, संगीत रविंद्र जैन का, गीत के बोल लिखे थे रविंद्र जैन ने। लीजिए सुनिए दुश्मनी फिल्म का ये गीत सपना अवस्थी की आवाज में।

एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
3: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
2: अच्छा, लेकिन तुम तो

0: कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शुतो 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी। रिले के लिए कुछ ही पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभा नेगी जी, जो कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला हैं, आज आकाशवाणी स्टूडियोज में हमारे मध्य हैं और आपसे हम जानकारी लेंगे कानून की बात कार्यक्रम में BNSS के अंतर्गत FIR इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस जांच भी हम जिसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। प्रतिभा नेगी जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: BNSS ये है क्या?
1: BNSS अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें बताया गया है कि जो हमारे आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई कैसे होती है, जांच कैसे होते और फैसले, इसमें किस तरीके का प्रोसीजर जांच एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनाती है और कोर्ट्स को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ये हम BNSS के माध्यम में जानते हैं।
0: जी प्रतिभा जी, जो FIR, देखिए जो हमारे आम ग्रामीण श्रोता हैं या एक आम व्यक्ति के लिए, इसको भी थोड़ा सा आसान कर दीजिए कि ये जो FIR है इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होती है?
1: FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसी भी कॉग्निजिबल ऑफेंस से हमारा तात्पर्य है जो गंभीर अपराध जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को ना तो कोर्ट की पूर्व अनुमति की जरूरत है व ना ही अपराधी को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत होती है, जैसे कि मर्डर, चोरी, रेप, ऐसे ऐसे गंभीर अपराध, इनको संज्ञेय अपराध भी कहा जाता है। इस संज्ञेय अपराध की फर्स्ट लिखित रिकॉर्ड को हम

0: FIR कहते हैं, और इसके ही आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है।
1: BNSS के तहत जो है वो FIR कैसे करवाई जा सकती है?
0: कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विक्टिम हो या कंप्लेनेंट हो या कोई भी आम नागरिक जिसने केवल देखा ही है आपराधिक घटना होते हुए, वह अपने नजदीकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर मौखिक, ओरल या लिखित रिटर्न में सूचना दे सकता है। अगर यदि वो सूचना ओरल है, मौखिक है, तो उसे लिखित रूप में दर्ज करते हैं। शिकायतकर्ता को उसके बाद पढ़कर सुनाया जाता है। जब वह पुष्टि कर दे कि हाँ, जो मैंने कहा था वही पुलिस ऑफिसर ने नोट डाउन किया है, उसमें वो सारी बातें आ गई हैं, उस पुष्टि के बाद उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इन्फॉर्मेंट या जिसने सूचना दी है उसको हस्ताक्षर करने से पहले ये भी सुनिश्चित करें कि सारे तथ्य को सही सही दर्ज हो गया है। कानूनी तौर पर कंप्लेनेंट का ये भी अधिकार है कि उसे रजिस्टर्ड FIR की साइंड कॉपी निःशुल्क दी जाए।
1: जी, तो यार एक इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या अनपढ़ भी है, वो भी जाकर FIR करवा सकता है, और जब वो किसी भी पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर वो अपनी बात या अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता है, उसके बाद उसको वो पढ़कर सुनाई जाती है कि आपने जो कहा है वो हमने ये नोट कर लिया है, ये लिखित रूप में हमारे रिकॉर्ड में आ गया है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति जाकर FIR, अगर ये ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जाकर FIR करवाएगा, तो कोई भी व्यक्ति जाकर जो है न्याय पाने के, जैसा हमने शुरू में कहा कि अधिकार सबको न्याय पाने का है, तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी FIR जाकर करवा सकता है, ये हमने जाना आपकी बात से। तो अच्छा, ये भी हमें बताएं आपकी, यदि पुलिस जो है, कई बार होता है ऐसा कि कहते हैं पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं जी, ऐसी शिकायतें सुनने में मिलती है, तो यदि कोई पुलिस अधिकारी ऐसा मना कर देता है FIR करने से, क्या पहले तो ये बताएं हमें कि क्या किया जा सकता है ऐसा, कि नहीं हम आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, या अगर कोई करता है तो कैसे इसके बारे में संज्ञान लिया जाता है?
0: FIR दर्ज करने के लिए मना नहीं किया जा सकता है, परंतु जैसे मैंने आपको पहले बताया था, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराधों की दो श्रेणी बनाई गई है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, संज्ञेय अपराध, अगर उसमें ये कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट में ये पाया जाता है कि ये संज्ञेय अपराध है, तो उसके लिए FIR रजिस्ट्रेशन को मना करना ये नहीं किया जा सकता है। परंतु असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल है, जिसमें आरोपी को बिना कोर्ट के अनुमति के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बिना वारंट के, बिना कोर्ट की अनुमति के जांच शुरू नहीं की जा सकती है, वो जनरली DDR जो डेली डायरी रिपोर्ट होता है थाने में, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर यदि पुलिस को लगता है कि इसमें परमिशन लेने की जरूरत है, तो फिर कोर्ट के पास में एप्लीकेशन मूव करके परमिशन ली जाती है। परंतु कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पर हो रहा है, वहां पर प्रतीत हो रहा है, उनको FIR को रजिस्ट्रेशन से मना नहीं कर सकते हैं। यदि SHO शिकायत दर्ज करने से इनकार करता है, तो आपको तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अपनी रिटन कंप्लेंट जिला के पुलिस अधीक्षक SP साहब को भेजना चाहिए। यदि वे भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप कोर्ट के माध्यम से FIR रजिस्टर करवाने की मांग कर सकते हैं।
1: जी, आपने ये दो बातें और कह दी यहाँ पे, एक कहा आपने संज्ञेय अपराध, एक कहा असंज्ञेय अपराध। अब मुझे तो नहीं मालूम है कि ये संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा इसे भी हमें आसान कर दीजिए।
0: BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है
1: जी,
0: इसी में ही कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की डेफिनेशन दी गई है। इसी के मुताबिक ही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, IO है, सेक्शन जो भारतीय न्याय संहिता के हैं, IPC जो आप पहले IPC के नाम से जानते थे, तो उसमें कौन सा ऑफेंस संज्ञेय है, कौन सा ऑफेंस असंज्ञेय है, वो शेड्यूल भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता के शेड्यूल में दिया गया है। जनरली गंभीर अपराधों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में डाला गया, और जो नॉन गंभीर अपराध है उनको असंज्ञेय की श्रेणी में डाला गया है। जैसे कि
1: उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी का कत्ल कर दिया किसी व्यक्ति
0: वो
1: ने,
0: तो गंभीर अपराध है, तो इसलिए संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आ गया। असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ गया जैसे कि पुलिस के काम में बाधा डालना, तो अगर कहीं तूतू मैमे हो जाती है पुलिस ऑफिसर के साथ में, तो जनरली वो उसको असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में,
1: मतलब छोटी मोटी बोलचाल हो गई, छोटी मोटी मारपीट हल्की फुल्की हो गई,
0: हाँ जी,
1: तो वो असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में कोई आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया,
0: हाँ जी,
1: तो ये आपने बहुत आसान तरीके से हमें समझा दिया कि कौन से अपराध जो है वो संज्ञेय हैं और कौन से असंज्ञेय अपराध हैं। तो प्रतिभा जी, हमें ये भी बताएं कि हमने सुना है कि एक जीरो FIR होती है, ये क्या होती है?
0: जीरो FIR ऐसी FIR है जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध उस थाने के क्षेत्र

0: अधिकार में ना हुआ हो, बाद में इसे संबंधित थाने में भेजा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा शिमला से किडनैप होता है और उसे आरोपी द्वारा चंडीगढ़ ले जाया जाता है। किसी तरह बच्चे अपने आप को छुड़ाकर भाग जाता है, वह चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पहले तो चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखने से मना कर देती थी। क्यों? क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके एवज में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, उसमें ज्यूरिसडिक्शन का जो कंसेप्ट था कि कहाँ एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, वो अपने ही क्षेत्राधिकार के थाने में ही हो सकती थी। अब जीरो एफआईआर चंडीगढ़ में भी हो सकती है, जीरो एफआईआर कहीं पर भी रजिस्टर हो सकती है, जिससे कि तुरंत आरोपी जो अभी भी चंडीगढ़ में है उसे पकड़ा जा सके, वह प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो सके। तो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ही इसलिए आया था, जैसे कि आप जानते होंगे निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था,
1: जी
0: उसमें जो आरोपी थे उन्होंने लिफ्ट दी थी विक्टिम को और उनके फ्रेंड को, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दी थी, मान लीजिए कि द्वारका में दी थी।
1: जी
0: उनको बिठाकर वो जब क्रॉस करते हुए किसी दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार में पहुंचे, उसी के बीच में वो ऑफेंस कमिट हुआ। तो जहां पर विक्टिम को बस से फेंक दिया गया था और वो उस थाने में मदद मांगने गए, तो उस थाने के ऑफिशियल ने ये कह के मना कर दिया कि ऑफेंस किसी और थाने में क्षेत्र अधिकार में हुआ है, इसलिए हम आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आरोपी भागने में सफल हो गए, जो वाइटल एविडेंस था वो दोषियों ने खुर्द-बुर्द कर दिया, बस की सफाई कर दी,
1: जी
0: तो वो सारे एविडेंसेस लॉस्ट हो गए। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ही इसलिए आया है कि वाइटल एविडेंस, जो उसी टाइम पे एविडेंस हमारे पास अवेलेबल रहता है जैसे ही तुरंत ऑफेंस कमिट हुआ है,
1: जी
0: उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और वो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। प्रिलिमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी कंसर्न्ड थाना है, जैसे कि इस केस में जो मैं किडनैपिंग का उदाहरण दे रही थी, उसमें शिमला का ज्यूरिसडिक्शन बनता है,
1: जी
0: शिमला थाने का, तो चंडीगढ़ थाने के ऑफिसर उस जीरो एफआईआर को शिमला थाने में भेज देगी
1: जी यानी
0: प्रिलिमरी
1: दर्ज वहां हो जाएगी।
0: इन्वेस्टिगेशन करने के। हाँ
1: जी
0: जी
1: दर्ज वहां करने के
0: हाँ
1: बाद उसको
0: जी
1: शिमला का
0: हाँ
1: जो
0: जी
1: थाना है
0: जांच
1: वहां
0: के लिए,
1: पे।
0: आगे आगामी जांच के लिए वहां भेज दी जाएगी।
1: जी तो देखिए, अब तो डिजिटल का जमाना है, सभी कार्य जो है डिजिटल तरीके से हो रहे हैं,
0: हाँ
1: तो क्या
0: जी
1: एफआईआर जो है ये भी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती?
0: हाँ जी बीएनएसएस के अंतर्गत यदि कोई भी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिसीव होती है, उसे भी मान्यता दी गई है। ऐसी सूचना जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिसीव होती है, उसे निर्धारित समय के भीतर सत्यापित या वेरीफाई करना होता है व इसके बाद एफआईआर रजिस्टर होती है। हिमाचल में हम एचपी स्टेट पुलिस सिटीजन पोर्टल या फिर एचपी पुलिस मोबाइल ऐप पर सूचना दे सकते हैं।
1: एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है वो पुलिस क्या कार्रवाई करती है?
0: एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपराध की जांच शुरू करती है। इसमें घटनास्थल का निरीक्षण, एविडेंस को कलेक्ट करना, गवाहों के बयान दर्ज कराना और आवश्यकता अनुसार आरोपियों की तलाश शामिल होती है।
1: तो जांच के दौरान जो है तकनीकी जो साधन रहते हैं हमारे पास उपलब्ध, उनका उपयोग किया जा सकता है क्या?
0: हाँ जी, पहले डिजिटल एरा नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब कोर्ट में पेश किया जाता था तो उसके साथ सर्टिफिकेट, इंडियन एविडेंस एक्ट था पहले, उसमें लगा है नहीं लगा है, किस तरीके से वो एविडेंस कोर्ट में आ रहा है, उसकी मान्यता पर शक पैदा हो जाते थे, जिसकी वजह से दोषी बरी हो जाता। अब इस डिजिटल एरा में बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक के जो चैट्स होते हैं, उसके कलेक्शन पर फोकस किया गया है ताकि जांच अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके।
1: प्रतिभा नेगी जी, जांच पूरी होने पर जो है वो पुलिस क्या करती है?
0: जांच पूरी होने पर पुलिस न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं, उसे प्रस्तुत करती है। इसके आधार पर ही आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू होती है। यदि इन्वेस्टिगेशन में आरोप साबित नहीं हो रहा है तो कैंसिलेशन या क्लोजर रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है। आपने सुना होगा कि कई बार फॉल्स एफआईआर भी लोग करवा लेते हैं, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है एंड एज पर जो सेक्शन 248 और 217 भारतीय न्याय संहिता के, आरोप सिद्ध होने पर 1 साल से लेकर 10 साल तक की भी सजा हो सकती है।
1: जी अंत में ये जानना चाहेंगे प्रतिभा नेगी जी, जो एफआईआर दर्ज करवानी होती है उसके लिए कोई निश्चित समय होता है क्या? और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा क्यों? ये दोनों ही बातें हमें बताएं।
0: एफआईआर को दर्ज करने के लिए कोई सही समय ऐसा नहीं है कि सही समय है या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग हो कि कई बार ऑफेंस, मान लीजिए आप अपने घर से गए हुए हैं,
1: जी
0: आप कहीं घूमने गए हैं, चोरी हो जाती है, आप आ रहे हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे ही आपको पता चला घर आप वापस आने के बाद कि चोरी हो गई है, तो आपको उसी समय तुरंत अपने निकटतम पुलिस थाने में जाना चाहिए। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, आजकल बहुत सारे लोगों ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं,
1: जी जी
0: तो वे किसी जैसे वेकेशन के लिए कहीं बाहर गए हैं, वे साथ में मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि सीसीटीवी कैमरास अपने ऑनलाइन उसमें देखते रहते हैं क्या चल रहा है उनके घर में, और उनको एकदम से पता लगता है कि उनके घर में चोरी हुई है।
1: जी
0: मान लीजिए वो गोवा में बैठे हैं, गोवा में वेकेशन पर है, और उनको पता लगा कि सीसीटीवी में, तो वे अपने निकटतम थाने में जाकर भी जीरो एफआईआर करवा सकते हैं, जिससे कि फिर आगामी उस एफआईआर को वापस उनके क्षेत्राधिकार वाले थाने में भेजा जा सके और वहां पर जांच शुरू की जा सके। इसलिए आपको जैसे ही ऑफेंस का पता लगता है, वैसे ही अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उससे एविडेंस कलेक्शन में बहुत मदद मिलती है
1: जी
0: और आरोपी के पकड़े जाने के भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं।
1: जी तो आम नागरिकों के लिए आपका कोई खास संदेश?
0: किसी भी अपराध की सूचना बिना भय के तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। सही और सत्य जानकारी देना प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। कानून का सहयोग करने से न्याय व्यवस्था मजबूत होती है और समाज में हमारी सुरक्षा बढ़ती है। एफआईआर और पुलिस जांच न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। बीएनएसएस का उद्देश्य नागरिकों को अधिक सुलभ, पारदर्शी और आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।
1: प्रतिभा नेगी जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और आपने पीएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर इन्वेस्टिगेशन विषय पर हमारे तमाम श्रोताओं को विस्तार से जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: कानून की बात कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बीएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस जांच विषय पर प्रतिभा नेगी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी रिले किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है, उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जी श्रोताओ, आप लोगों से रेडियो के माध्यम से मिलकर हमारे चेहरे पर भी ताजगी और खुशी आ जाती है, क्योंकि हमारा और आपका ये साथ बना हुआ है फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम सुन रहे हैं गीतांजलि और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पवन शर्मा के साथ।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ से इस वक्त आपने ट्यून इन किया है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतांजलि। श्रोतो, हमारे सभी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी, जिनका साथ हमें हमेशा प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। जीवन में जब कभी लगे मन उदास है, परेशान है, तो ऐसे लोगों से हमें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या का कोई ना कोई हल इन्हीं लोगों के पास हमें बातचीत करके मिल जाता है। क्यों, आपके साथ होता है ऐसा?

0: कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निःशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, हमीरपुर जिले के जोल सप्पड़ में 35 करोड़ से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। शिमला जिला में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व विकास के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदम। प्रदेश में हुई गेहूं की खरीद में सिरमौर जिला अग्रणी, निर्धारित लक्ष्य से दोगुना गेहूं खरीदा गया। शिमला में ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन चरम पर, 2 महीनों में 16 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 4 जिलों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल हमीरपुर जिले के जोल सप्पड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने इसी परिसर में नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के अत्याधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इस राशि से इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती कर रही है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को विश्व मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण और वैश्विक नीति के चलते भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। इस बीच सांसद सुरेश कश्यप आज शिमला जिला में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक लेंगे। इस बैठक में जिला में चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के अलावा भावी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए शिमला जिला में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला जिला में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से बालिकाओं को आवासीय सुविधा सहित शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। 95 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी विभागीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रही है। जिला में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक अल्पसंख्यक समुदाय के

0: 71 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 6 परिवारों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। टर्म लोन योजना के तहत 3750 लाभार्थियों को 115 करोड़ के करीब की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित युवा इन दिनों लाहौल स्पीति जिला के सीमावर्ती गांव के भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चरण दो के चौथे दिन की शुरुआत योग और ध्यान सत्र से हुई। इससे युवाओं में स्वास्थ्य और सामूहिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लेपचा, लांजा, हिक्किम और कौमी गांव का भ्रमण किया। युवाओं ने यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली को करीब से जाना। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका शुक्ला को पत्र लिखकर अपने विचार और आकांक्षाएं भी साझा की। वहीं तीरंदाजी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांव के युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: राजधानी शिमला में इस बार ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन में बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हुए हैं। इस वर्ष मई व जून माह के दौरान अब तक शिमला में 16 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है, जिससे शहर में यातायात का अत्यधिक दबाव लगातार बना रहा। शिमला पुलिस के अनुसार शहर के भीतर ट्रैफिक सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई गेहूं की खरीद के मामले में सिरमौर जिला प्रदेश भर में पहले स्थान पर आया है। जिला में तय लक्ष्य के मुताबिक 2 गुना गेहूं खरीदा गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल का घर द्वार पर ही उचित मूल्य मिला है। अधिक जानकारी हमारे सिरमौर जिला संवाददाता के साथ।
3: गेहूं खरीद के लिए जिला सिरमौर पूरे हिमाचल में पहले स्थान पर आंका गया है। जिला में 1000 क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले यहां पर 1977 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। जिला में 2 खरीद केंद्र बनाए गए थे, जो पावटा साहिब और धोला कुआ में स्थापित किए गए थे, जहां जिला के 640 किसानों ने अपना गेहूं बेचा। सरकार द्वारा इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। खास बात यह भी रही कि 3 दिनों के भीतर यहां किसानों को ऑनलाइन उनके खातों में पेमेंट की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: आज प्रदेश भर में स्कूलों में मिड डे मील वर्कर्स 1 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। सीटू के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने आज काम न करने और शिमला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये जानकारी देते हुए यूनियन के राज्य प्रभारी जगत राम ने बताया कि मिड डे वर्कर्स वेतन में 17 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन वर्कर्स को 10 महीनों की बजाय 12 महीनों का वेतन भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए आज प्रदेश भर से आए मिड डे मील वर्कर्स शिमला में टॉलेंट से सचिवालय तक रैली प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराएंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज बादल छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मॉनसून के निकट पहुंचने का असर देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जून माह में अभी तक सामान्य से 20% कम वर्षा हुई है। विभाग का मानना है कि इस वर्ष मानसून धीमा चल रहा है, जिससे प्रदेश में मानसून के पहुंचने में 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। अब एक नजर

0: अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, हिमाचल करेगा खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी की दावेदारी। पंजाब केसरी ने लिखा है, खेलो इंडिया गेम्स हिमाचल में करवाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, आर्थिक स्थिति सुधरते ही बोर्डो निगमों में भी ओपीएस। हिमाचल में प्रीपेड मीटर के बिल पर बिजली बोर्ड देगा 1.50% की छूट, पंजाब केसरी की एक खबर है। प्रदेश में मौसम का डबल बूस्टर, बरसात के बाद तेज धूप से बढ़ेगा सेब का आकार, बागवानों को मिलेंगे अच्छे दाम, दैनिक भास्कर की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हमीरपुर जिले के जोलसप्पड़ में 35 करोड़ से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। शिमला जिला में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व विकास के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदम। प्रदेश में हुई गेहूं की खरीद में सिरमौर जिला अग्रणी, निर्धारित लक्ष्य से दोगुना गेहूं खरीदा गया। शिमला में ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन चरम पर, 2 महीनों में 16 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 4 जिलों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी गीत।

शो तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसे हम पा नहीं सकते। जब मन में इरादा कर लिया, कुछ ठान लिया, कुछ चाह हमने कर ली, तो बस उस तक पहुंचने के लिए हमारी मेहनत की जरूरत होती है। वैसे काम हमेशा हमें ऐसे करने चाहिए जो नेक हो, मतलब इससे किसी का नुकसान ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, अपना भी टारगेट हमारा अचीव हम कर लें। फिलहाल हमारा टारगेट है आपका मनोरंजन गीत संगीत के साथ करने का, क्योंकि गीतांजलि कार्यक्रम में बना हुआ है हमारा और आपका साथ।

सुबह का समय बहुत ही ताजगी भरा होता है, हम सब भी एनर्जेटिक फील करते हैं। कभी सोचा है अगर ये रात ना होती तो क्या होता? मुझे लगता है तब सारे लोग दिन रात ही काम करते रहते। ऐसे वैसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर ने हर चीज़ को बैलेंस किया है, संतुलित किया है। जैसे दिन के बाद रात, धूप के बाद बरसात, सर्दी के बाद गर्मी आती है और सब चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो मुझे लगता है बातचीत ज़्यादा हो रही है, गाना बीच में ही छूट रहा है। आपके मनोरंजन के लिए जारी है गीत संगीत कार्यक्रम गीतांजलि में।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सुहाना सफर गीतांजलि यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम।

सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में सुना आपने इस गीत को। श्रोतो, इस गीत को हमने लिया है फन्ने खां फिल्म से।

सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाज़ों में सुना आपने इस गीत को। अगला गीत श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं एयरलिफ्ट फिल्म से।

श्रोता, अभी आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अकीरा फिल्म से।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुँच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

इस गीत को आप सुन रहे हैं बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म से। आतिफ असलम की आवाजें हैं।

अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का पहला गीत हम

दिक्खो शो तो पहाड़ी गीत सुनने जो कितने शैल लगदे हैं और अपने अपने पासे दे गीत सुनने दा अपना ही एक अलग मजा हुंदा है। तो चला अगे अहां तो अहां जो सुनांदे हैं ना सुनील राणा दी आवाज़ा जी कोर हिमाचली प्यारा दिया गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दिखा जी इस वेले तुहां सुना दे अन पहाड़ी गीत आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते। इस कार्यक्रम का नाम आहा रखी त्या पहाड़ां दे सुर, ता सुरा च सुर मिलांदे ने। दिखा हुंदा क्या है कि जाली आहां दे अपने व्याह शादियां हुंदियां हैं, इत्थी हिमाचल की गल करिए ता हिमाचले दी शादियां च हिमाचली गीत ना वजन तो गलबात नहीं बनती है, और इन्हां गीतां जो सुनने का एक अलग ही मज़ा हुंदा है। ता ये फिर ते एक प्यारा दिया सोहना दिया हिमाचली गीत तुहां तक पहुँचाते हैं।

जी हाँ, अजकल ठंडी ठंडी हवा की बड़ी बारी जरूरत होती, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो मन करता है कि थोड़ा जहा हाँ पहाड़ों वाल चली जाकर ठंडी हवा के नज़ारे लैन।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के गीत, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल हमीरपुर जिले के जोल सप्पड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने इसी परिसर में नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इस राशि से इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भर्ती कर रही है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को विश्व मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण और वैश्विक नीति के चलते भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस बीच सांसद सुरेश कश्यप आज शिमला जिला में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक लेंगे। इस बैठक में जिला में चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के अलावा भावी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व विकास से जुड़ी योजनाओं को लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए शिमला जिला में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला जिला में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से बालिकाओं को आवासीय सुविधा सहित शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। 95 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी विभागीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रही है। जिला में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक अल्पसंख्यक समुदाय के 73 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 6 परिवारों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। टर्म लोन योजना के तहत 3750 लाभार्थियों को 115 करोड़ के करीब की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 21,000 से अधिक मिड डे मील वर्कर आज एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। सीटू के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने आज काम न करने और शिमला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये जानकारी देते हुए यूनियन के राज्य प्रभारी जगत राम ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स वेतन में 17 वर्षों से बढ़ोतरी न होने और वहीं प्रदेश के हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन वर्कर्स को 10 महीनों की बजाय 12 महीनों का वेतन अभी तक लागू न करने को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश भर से आए मिड डे मील वर्कर शिमला में टॉलैंड से सचिवालय तक रैली प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराएंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित युवा इन दिनों लाहौल स्पीति जिला के सीमावर्ती गांवों के भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चरण 2 के चौथे दिन की शुरुआत युवा ध्यान सत्र से हुई। इससे युवाओं में स्वास्थ्य और सामूहिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लेपचा, लांजा, हिक्किम और कौमी गांव का भ्रमण किया। युवाओं ने यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली को करीब से जाना। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका शुक्ला को पत्र लिखकर अपने विचार और आकांक्षाएं भी साझा की। वहीं तीरंदाजी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांव के युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज बादल छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए बारिश और अंधड़ आने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मानसून के निकट पहुंचने का असर देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जून

0: में अभी तक सामान्य से 20% कम वर्षा हुई है। विभाग का मानना है कि इस वर्ष मॉनसून धीमा चल रहा है, जिससे प्रदेश में मॉनसून के पहुंचने में 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी लोकगीत महक पंजाब दी।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं जतिंदर लेके हाजिर हूं प्रोग्राम महक पंजाब दी।

दोस्तों तई जानते पंजाब के लोग गीता सदियां पुराने इतिहास में अपने अंदर समेटे हुए हैं। विहां दे गिद्दे बोलियां अते माहियां तक रचना लोक जीवन की कहानी बयान करती है। आओ इसे संगीतक विरासत नूं महसूस करते हैं इस गीत विच।

दोस्तों, पंजाब की इस धरती ने दुनिया को मेहनत मुहब्बत का संदेश दिता है। कहा जाता है पंजाबियों का दिल उन्हां दे खेतां वांग ही विशाल हुंदा है। इसे मिट्टी की महक नूं नाल भरिया पेश है अगला गीत।

दोस्तों एक दिलचस्प गल यह है कि पंजाबी संगीत आज दुनिया के हर कोने विच सुनिया जाता है, चाहे आस्ट्रेलिया हो या यूरोप। पंजाबी बीट्स लोगों नूं चुम्मन लई मजबूर कर देंदे हन, पर इस दियां जड़ां अज भी पंजाब की मिट्टी विच वसदियां हन। पेश है अगला गीत।

पंजाब की पहचान सिर्फ भंगड़े और गिद्दे नाल ही नहीं सगो इसके लोगों की हिम्मत मेहनत और जिंदा दिली नाल भी है। यही जिंदा दिली पंजाबी गीतों की रूह है जो हर सुनने वाले के मन में छू जाती है। आओ इस महफिल का अगला गीत सुनते हैं।

दोस्तों पंजाब दी गल होवे ते मेलिया दा जिक्र ना होवे ऐ किवें हो सकदा है। विसाखी लोहड़ी माघी वर्गे त्यौहार पंजाब दे जीवन विच एक नवी ऊर्जा पा दिंदे हन। इन्हां जश्नां दी रौनक पंजाबी गीतां विच वी झलकदी है। पेश है अगली सुरीली पेशकश।

दोस्तों प्रोग्राम के अंत में मैनू जतेंद्र नूं दो इजाजत अते जांदे जांदे आपां सुणदे हां एक होर प्यारा जिहा गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाबी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।

0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। फिल्म संगीत के सफर में कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

अब दिल्ली दूर नहीं, इस फिल्म से ही देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में सदा सुहागन फिल्म का नगमा सैनिक साथियों अब आपको सुनवा रहे हैं।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ इसके आकर्षक डिजाइन आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हार्ड ड्राइव बने खास साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट जल्दी कीजिए कीमतें जल्द बढ़ने वाली है आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम नियम एवं शर्त लागू
4: मैं हूँ HIV वायरस नाम तो सुना ही होगा मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को तो मैं हूँ HIV वायरस मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
6: दोपहर के 12:12 और 10 सेकंड हुए हैं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए मनमौजी फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज संगीत मदन मोहन का
7: जरूरत है सख्त जरूरत है

मनमौजी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सैनिक साथियों अभी आपने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए गुलजार के बोलों को, संगीत राहुल देववर्मन का। आशा भोंसले की मीठी सी आवाज़ इस गीत में है, फिल्म है खूबसूरत।

0: मुझको बाबू, मैं फिर भी बच्चा।
1: सावन कुमार के इस संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए उषा खन्ना के बोलों को। प्यार की जीत इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोंसले की आवाज़ एक बार फिर से इस गीत में।

सैनिक साथियों, अब लीजिए सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में कलयुग की रामायण फिल्म का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम सुनो सखी लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी सखी सुमन। कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और हाँ, सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी में। तो सखियों, आज है सोमवार और हर सोमवार हम करते हैं हिमाचली संस्कृति पर बातचीत। हमारे हिमाचल की संस्कृति अपनी सादगी, धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ की लोक कला, वेशभूषा और रीति रिवाज आज भी अपनी प्राचीन मूल पहचान के साथ जीवित है। सखी, हम सभी जानते हैं कि हमारा हिमाचल बर्फ से ढके हिमालय की गोद में स्थित, शुद्ध वातावरण और ढेर सारा सुकून हमें यहाँ मिलता है। और सखी, मौसम के हिसाब से हमारा हिमाचल बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं होती है। दो चार दिन तेज़ धूप लगे या ज़्यादा गर्मी हो तो चौथे या पाँचवें दिन जो है बारिश होना स्वाभाविक सी बात हो गई है और मौसम ठंडा हो जाता है। और हाँ, अगर बारिश ना हो तो भी सहने वाली गर्मी यहाँ होती है। ठंडी हवाएं राहत देती हैं। और हाँ, ऊपरी इलाकों यानी पहाड़ों की बात की जाए तो वहाँ कूलर, पंखे इत्यादि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ठंडी हवाएं गर्मी का एहसास होने ही नहीं देती है। तो है ना सखियों, कितनी सारी खूबियां हमारे पहाड़ों की, हमारे प्यारे हिमाचल की। तो सखियों, कहते हैं ना कि सुंदर वादियों का हसीन नज़ारा, सड़क से सुंदर हिमाचल हमारा। तो हिमाचल की खूबसूरती को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो आप सभी सुनते रहे सुनो सखी कार्यक्रम। तो ये इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा पहला गीत।
1: क्या होगा, होना है जो, वो होगा, होता है जो, हो जाने।

ना दीवाने को समझाने दो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोतो सखियो, गीत और विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति के ऊपर ढेर सारी बातें हमें आपके साथ करनी है। सखियो, हमारा हिमाचल स्थानीय विरासत का खजाना है, जो अपनी परंपरा, कला, संस्कृति में से प्रकट होता है, और इस विरासत का पहलू देवी देवताओं पर भी केंद्रित आस्था है। सखियो, हमारे हिमाचल की संस्कृति, त्योहारों के उत्सव, संगीत की धुन, लयबद्ध नृत्य रूप और सरल संगीत शैली के लिए जाना जाता है। हिमाचल की संस्कृति और कला और साथ ही साथ हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है पश्मीना शॉल, और हाँ, रंग बिरंगी टोपियों की मांग देश विदेश में भी रहती है। हमारे हिमाचल में किसी भी अतिथि को सम्मानित करने के लिए हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें श्रोता हिमाचल की संस्कृति को दर्शाती है, जैसे धातु के माल में आकर्षक बर्तन, चांदी के आभूषण, मूर्तियाँ शामिल है। इन आभूषणों को हमारी महिला बहनें अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पहनती हैं और खूबसूरत भी दिखती हैं। जैसे कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, पंगवती और भरमौर आकर्षण आभूषणों के लिए जाना जाता है। सखियों, हमारे हिमाचल की शान ही निराली है। जहाँ हवाओं में खूबसूरती है, सादगी इंसानों में रहती है। जहाँ पहाड़ों से मिलने आते हैं और बादल, वो स्वर्ग है हिमाचल का। तो थोड़ी सी बात हम और भी कार्यक्रम में करेंगे, और फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुक भी लेते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में कुछ गीत संगीत ना हो तो कार्यक्रम में मज़ा नहीं आता है। तो थोड़े से कार्यक्रम को और रंगीन करते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

सखी इस प्यारे से गीत के बाद फिर से कार्यक्रम में वापसी करते हैं, क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत है और बातें भी बहुत सारी हम अपने पिटारे में भर कर लेकर आए हैं। तो आइए फिर से हम अपने कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और हमारी बात थोड़ी सी मेलों को लेकर हो रही थी सखियों। तो ये त्यौहार धार्मिक संस्कारों संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं जो हिमाचल की उनकी क्षमताओं का सबसे अच्छा दावा करते हैं। त्यौहारों पर हम खूब मस्ती करते हैं, हम लोग रंग बिरंगे कपड़े और नए हर चीज़ पहनते हैं, घर पर कुछ नया सामान भी लेकर आते हैं, साथ ही साथ नृत्य और गायन में खुद को तल्लीन करते हैं। अन्य सभी

भारतीय त्योहारों को मनाने के अलावा कुछ स्थानीय त्योहारों को उसे जीवंत और उत्सव के साथ भी मनाया जाता है। सखियों, कुछ ऋतुओं का आगमन, बैसाखी और लोहड़ी जैसे कुछ त्यौहार आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ मनाते हैं। उत्सवों में दुनिया भर के लोग भाग लेते हैं। दिवाली की बात करें तो ये पूरे राज्य में मनाई जाती है। पूजा अर्चना लक्ष्मी माँ और कुबेर भगवान की जाती है और लोहड़ी भी खूब धूमधाम से मनाई जाती है। खूब मूंगफलियाँ, रेवड़ी, गच्चक हम लोग खाते हैं और उस समय होते भी सर्दियों के दिन हैं तो आग सेकना भी उस समय हमें काफ़ी अच्छा लगता है। दिसंबर की बात सखियों करें तो दिसंबर में क्रिसमस का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। हाथ मिलाकर, गले लगकर एक दूसरे को त्यौहार की बधाई भी देते हैं। केक का खाने में विशेष महत्व रहता है क्योंकि उस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन होता है और लोग एक दूसरे को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। संतरे, खजूर, मूंगफली, गच्चक, खासतौर पर केक, चॉकलेट के साथ इसे खाया जाता है और इस त्यौहार को मनाया भी जाता है। हमारा भारत विविधता में एकता वाला देश है और हम अपने बच्चों को भी इन त्यौहारों के बारे में खूब बताते हैं। तो सखियों, कितने सारे त्यौहार हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं और बहुत सारे त्यौहारों के पीछे कुछ ना कुछ जानकारी भी छिपी होती है। वो हम खुद भी जानते हैं और अपने बच्चों तक भी इस जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि अभिभावकों का काम होता है कि बच्चों को हर तरह की जानकारी देना, उन्हें रीति रिवाजों के बारे में बताना, त्यौहारों के बारे में बताना, खान पान से जुड़ी हुई जो कुछ परंपराएँ हैं उन्हें भी हम अपने बच्चों को बता सकती हैं और हमारा ज्ञान जो है बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन थोड़ा सा फिर से हम कार्यक्रम में रुक लेते हैं और आप सभी तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। इस गीत को हमने लिया है नामुमकिन फिल्म से। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

सखी, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारी वापसी हुई है। तो हम बात आज हिमाचली संस्कृति की कर रहे हैं। मंडी की शिवरात्रि को किस तरह से सखियों हम भूल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मंडी मेले कृष्ण पक्ष की 13वीं रात को से शुरू होता है और ये 6 दिन तक चलता है। इस 7 दिनों के दौरान शहर भव्य रूप में दिखाई देता है, क्योंकि कढ़ाई द्वारा वस्त्रों से सजी 200 से अधिक मूर्तियां जिला भर के सैकड़ों मंदिरों में शहर में विष्णु भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाई जाती हैं। अब हम नलवाड़ी मेले को कैसे भूल सकते हैं, थोड़ी सी बात वहां की भी कर लेते हैं। 5 दिवसीय पशु मेला या वार्षिक पशु मेला हिमाचल के बिलासपुर में मनाया जाता है। ये पशु व्यापारियों के लिए व्यापार का मंच होता है और इस मेले के दौरान सुंदर ढंग से सजाए गए पशुओं को नालागढ़ और आसपास के अन्य क्षेत्रों से लाया जाता है और अच्छी कीमतों पर बेचा भी जाता है। सखी, बहुत सारी बातें जो हैं हिमाचल संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्योंकि समय अभी हमारे पास बाकी है। क्योंकि जब समय होता है तो मन करता है बहुत सारी बातें अपनी सखियों के साथ कर ली जाए, जाने कब फिर दोबारा मुलाकात हो। वैसे तो होती रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद हम मिलते हैं, फिर अगली बार कुछ अलग विषय पर बातचीत होती है। तो जब हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है तो एक के बाद एक बात दिमाग में आती है और मन करता है इसे भी कर डालें। तो क्यों मन में विचार रखना है, कहते हैं हमारे बुजुर्ग भी कि मन में कोई बात हो तो बस कह डालनी चाहिए, मन में रखना नहीं चाहिए कुछ। तो ढूंगरी मेले की बात सखियों करें तो इस त्यौहार की जड़ें महाभारत महाकाव्य में निहित है। ये भीम की पत्नी हिडिंबा के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इससे हिडिंबा देवी के मेला भी इसे कहा जाता है और स्थानीय लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। ये भव्य मेला बसंत पंचमी को आयोजित किया जाता है, जो बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। तो सखियों, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और बातचीत जो है हिमाचल की संस्कृति के ऊपर। हिमाचल की संस्कृति बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारा हमें सीखने को भी यहाँ से मिलता है। और साथ साथ हिमाचलियों की सादगी की बात करें तो उनकी सादगी बेहद बेहद निराली है। और इसी सादगी के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप सुनते रहिए सुनो सखी कार्यक्रम।

सखी इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से वापिस आए हैं और सभी अब हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो प्यारे सखी नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है अंकित दिमान ने। प्यारी सखियो नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia today for an official two-day visit. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivapur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
2: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. In Jharkhand, at least 8 people were killed and several others injured in multiple lightning strikes reported from different parts of the state during the past 24 hours. The incidents were reported from Ramgarh, Giridih, Khunti, Deoghar, Dhanbad and Sahibganj districts. The injured have been admitted to hospitals for treatment. Officials said that some of them are in serious condition. Meanwhile, authorities have advised people to remain alert during thunderstorms and adverse weather conditions. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir and Ladakh today. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade. Today, the Sensex climbed 360 points to 77,163, while the Nifty rose 105 points to 24,118 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप

साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गज़ल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गज़ल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्ज़ा गालिब का शेर याद है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई में बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज़्यादा याद रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है, जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं, भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती हैं। तन्हाई बुरी नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज़ कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियाँ तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते तमन्ना का खून हो गया। आते आते आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है, और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं, तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए ज़िंदगी के सया अबदी, तेज़ आंधियाँ ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया है इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है?

सिलसिला फिल्म का यकीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल, और हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही पहचाना कि इसके संगीतकार हैं शिवहरी यानी शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और इस प्यारे से गीत को हम सुन रहे थे, और इसके बाद जब अगली शायरी करने की बात आती है तो मैं आपको पहले ही एक प्रश्न दे दे रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि कभी किसी अपने को, यानी हो सकता है वो आपके प्रेयस हो, प्रेयसी हो, पति हो या पत्नी हो, कोई इतना इतने दिल के करीब जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह ज़रूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी

किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया, हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफ़र बन जाती हैं। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद हैं, उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए ही हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस प्रेयसी पति पत्नी महबूब के लिए कब पढ़ी थी, तो और कौन सी पढ़ी थी वो ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगली नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से है, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

0: एक बहुत सुंदर सा गीत हम अभी सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने, खयाम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता है और उन्होंने बहुत सारी शायरियाँ हम तक पहुँचाई हैं। एक एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को हमने आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अज़ीज़ की गज़ल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बसीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, गिरा जो हाथ से फूल सीधा पांव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफ़र, हाथ में गरम चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियाँ बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियाँ हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियाँ हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफ़र। और इस सुरीला सफ़र में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँरा का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा, रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती हैं कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम, और वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तन की सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मधोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारवां गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूँ जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऐ विविध भारती, तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेरो शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज़ कागज़ पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी है आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बात करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर वीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफ़ानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ। बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियाँ हम तक साझा करें।

0: यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना

0: अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोलो चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के हैं बोल, और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में भरत व्यास के बोलों से रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे कि जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा। संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामयिक चर्चा रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हिमाचल को साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर के हरनोड़ा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह नादौन में ब्यास नदी और शिमला जिला में सतलुज नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नई इको टूरिज्म नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा भी आरंभ की है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बरसात के नुकसान के लिए भरपूर सहायता दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत किए हैं। वे आज शिमला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय पर कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं

0: भेज रही है और उसी के आधार पर केंद्र द्वारा फंड जारी किया जाता है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और मनरेगा व एमपी लैड से संबंधित कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी या गड़बड़ी संबंधी कुछ एक मामले सामने आए हैं जिनका निपटारा कर दिया गया है।
1: आज हमारी दिशा की बैठक थी और इसमें हमने लगभग 40 के करीब जो और केंद्र और स्टेट की जो योजनाएं हैं उनका रिव्यू किया। काफी प्रोग्रेस देखने में हमको मिली है। मैंने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और अभी से हमको उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और अभी जो RDSS करके एक विद्युत विभाग की स्कीम आई है जिसमें जहाँ पर भी बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या है या ट्रांसफार्मर्स को चेंज करने की आवश्यकता है, 3 फेज लगाने की आवश्यकता है, उसमें बहुत अच्छा काम देखने को मिला है।
0: मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर आज प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। इस दौरान सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी, ग्रेच्युटी, पेंशन और 12 महीने का वेतन देने जैसी मांगों को लेकर आज शिमला में टॉलेंट से सचिवालय तक रोष रैली निकाली। इस दौरान मिड डे मील वर्कर्स ने केंद्र व राज्य सरकार पर उनके शोषण का आरोप लगाया। यूनियन की राज्य महासचिव शांति देवी ने मिड डे मील वर्कर्स को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 12 महीने का वेतन देने और नियमित करने के लिए नीति बनाने की मांग की है।
2: मांग ये थी कि हमें हरियाणा की तर्ज पे वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन में हमें लिया जाए, 25 बच्चों की शर्त को खत्म किया जाए, छुट्टियों का प्रावधान किया जाए, साल में 2 वर्दी दी जाए और मेडिकल सुविधा दी जाए। 3-4 महीने के बाद वेतन दिया जाता है जिससे कि हमारा घर चलाना मुश्किल होता है।
0: यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
3: 2004 से लेकर के ये स्कीम मिड डे मील वर्कर की चली है, तब से इसमें अब तक सरकार ने कोई भी संशोधन नहीं किया है, इसलिए हम ये धरना देने के लिए मजबूर हुए। अगर सरकारें हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम आगे और उग्र आंदोलन तैयारियां करेंगे और सरकार का अच्छी तरह से कठोरता से सामना करेंगे।
0: चंबा नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुवनेश्वर गुलाटी और उपाध्यक्ष जितेंद्र सूर्य ने आज पद व गोपनीयता की शपथ ली। SDM प्रियांशु खाती ने दोनों पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और विधिवत कार्यभार सौंपा। शपथ ग्रहण करने के बाद भुवनेश्वर गुलाटी ने कहा कि शहर की सफाई, निर्बाध पेयजल व्यवस्था सहित चंबा शहर का सौंदर्यकरण उनकी प्राथमिकता रहेगी। उधर नाहन में कोरम पूरा न होने के चलते नगर परिषद अध्यक्ष और अध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित हो गया। कार्यवाहक SDM व तहसीलदार नाहन उपेंद्र चौहान ने बताया कि 7 पार्षद चुनाव के लिए आयोजित बैठक में नहीं पहुंचे जिसके चलते ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि अब ये चुनाव 24 जून को आयोजित किए जाएंगे।
4: नाहन के MC के लिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव निर्धारित किए गए थे 22 तारीख को, किन्हीं कारणों से हमारा जो रिक्वायर्ड कोरम था कि 10 पार्षदों की उपस्थित अनिवार्य थी, परंतु हमारे यहाँ सिर्फ 6 पार्षद उपस्थित पाए गए। इन्हीं कारणों के चलते पूर्ण नहीं हो पाए और इसके लिए हमने अब नेक्स्ट जो डेट निर्धारित की है वो 24 तारीख प्रातः 11 बजे टाउन हॉल।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है पिछले 12 वर्षों में भारत के अंतरिक्ष भविष्य का निर्माण। वाचक स्वर है पूनम शर्मा का।
0: पिछले 12 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा विश्वास, विकास और जन कल्याण की भावना को प्रतिबिंबित कर रही है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 की कल्पना से प्रेरित होकर भारत दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में उभरकर सामने आया है। इस अवधि की प्रमुख उपलब्धियों में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक उतरना, आदित्य L1 का सौर मिशन और गगनयान व राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारियां शामिल हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या जो 2014 में केवल 1 थी, फरवरी 2026 तक बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदार बनाए गए नियमों, निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व में अंतरिक्ष

0: कृषि प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण ने इस क्षेत्र की प्रगति को नई गति दी है। ये उपलब्धियां एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं जो विकास, वैश्विक साझेदारी और समावेशी प्रगति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय आत्मविश्वास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनकर उभरा है। एक वैज्ञानिक प्रयास के रूप में शुरू हुई यात्रा आज एक ऐसी रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा में परिवर्तित हो चुकी है जो विकास को गति देती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। पिछले दशक में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के दायरे का लगातार विस्तार किया है। इसकी शुरुआत अंतरिक्ष अन्वेषण पर केंद्रित प्रयासों से हुई थी, जो अब वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास और राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के एक व्यापक प्रयास में परिवर्तित हो चुका है। आज भारत गहन अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष विज्ञान, मानव अंतरिक्ष उड़ान और कक्षीय अवसंरचना के क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत की चंद्र यात्रा वैज्ञानिक खोज और तकनीकी प्रगति के प्रति एक स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसकी नींव 2008 में चंद्रयान 1 के साथ रखी गई थी, जो भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन था। इसके बाद 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 ने भारत के चंद्र कार्यक्रम को और मजबूत किया। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ने भारत को वैश्विक चंद्र विज्ञान में एक गंभीर और महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित किया और भविष्य के अन्वेषण के लिए मजबूत आधार तैयार किया। ये आधार 23 अगस्त 2023 को एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में सामने आया। चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना दिया। भारत की चंद्र महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2027 के लिए प्रस्तावित चंद्रयान 4 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में जल और अन्य वाष्पशील पदार्थों की खोज करेगा, जिससे भारत चंद्रमा अन्वेषण के अगले युग में और गहराई तक प्रवेश करेगा। चंद्रमा और मंगल पर अपनी उपलब्धियों के आधार पर भारत अब शुक्र ग्रह के लिए अपने पहले मिशन की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शुक्र ऑर्बिटर मिशन को मार्च 2028 में प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता पिछले 12 वर्षों में हुए व्यापक राष्ट्रीय परिवर्तन की कहानी को दर्शाती है।
1: हम आकाशवाणी के शिमला
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
3: कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। चार प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि

0: होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
2: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
3: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
0: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिक से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुधली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
4: अम्मा ये देखता क्या हूँ?
5: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
4: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
5: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
4: बहुत अच्छा होता।
6: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
4: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
6: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
4: अम्मा अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
6: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहाँ शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नज़र बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत

0: जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
1: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
1: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा, यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
2: बेटा,

0: के लिए और लज्जित न कीजिए।
1: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
2: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे, तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूँ कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहाँ पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूँकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहाँ पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊँगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
4: हाँ, ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
3: बिल्कुल, और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियाँ होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें।
4: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहाँ बड़े बच्चे हैं वहाँ उनको ये सब चीज़ देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था और अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत ज़रूरी है।
3: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीज़ें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज़ भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथ ही तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा।
4: बिल्कुल,
3: है ना। तो हम
4: वहीं देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
3: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएँ शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं, लेकिन देखा जाए दीपा तो हम लोग के समय भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना।
4: बिल्कुल, क्योंकि ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
3: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराए नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं।
4: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
1: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, गर्मी
1: और हर एक अच्छी चीज़ के साथ एक चीज़ है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती
0: है। क्योंकि देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहले तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाएँ। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
1: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये, और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है, गर्मी और बरसात की जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहाँ पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीज़ें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है, तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहाँ पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: खिड़कियों में दरवाज़ों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
1: और ये इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियाँ खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
0: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
1: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।

0: अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद, जो सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनी की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा, और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियाँ कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर

0: मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भो रखना है। और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू

0: तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा ज़िद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे

0: डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
1: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़े स्टूडियोज़ हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
0: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
1: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
0: अच्छा।
1: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं, उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएँ, छोटे शहरों में चले जाएँ, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊँगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना ज़रूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर ख़राब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
0: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
1: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज़्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज़ होना, प्री डायबिटीज़ होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वज़न बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण हैं जिससे लिवर में फैट ज़्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुँच सकता है।
0: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
1: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक ख़राब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें, उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण हैं जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वज़न बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
0: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जाँच पद्धति है?
1: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पर डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी ज़िंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, पूरी

0: जिंदगी कट जाती है, लीवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लीवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लीवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लीवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं। क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है
1: जी।
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लीवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लीवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है
1: जी।
0: अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लीवर खराब है, तो लीवर बायोप्सी करते हैं, लीवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लीवर बायोप्सी फैटी लीवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं
1: जी, जी,
0: कि
1: जी,
0: दो
1: जी,
0: मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको लीवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज़ टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रा भी तकलीफ़ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज़ करते हैं, अपने आप ही गूगल के ज़रिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफ़ी साल, 14-15 साल मैंने वहाँ बिताया।
1: अच्छा,
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफ़ी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: क्या
0: है।
1: बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की, हमने वहाँ पे तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं, हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊँगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, बनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयाँ, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा दवाई हम यूज़ करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है टू डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्हों 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ

0: जॉब, ट्रैवल, वो सब से भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, पाँच मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती हैं।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, अब 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है। आई मीन ये मैं डायबिटीज़ वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज़्यादा होती है। तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ।
1: जी जी, जी
0: लाइक थोड़ी बीट सोनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना।
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है। सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना ज़रूरी है कि बस भागना ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज़ इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और ज़िंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी है, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीज़न, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज़ की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज़ के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ फेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज़ नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की ज़रूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज़्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन, चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना।

0: हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ,
0: बताइए।
1: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके
0: जी
1: दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: जी।
1: और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे, 70 to 80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10 से 15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज़्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। तो हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम। इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे
0: बिल्कुल
1: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी। तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है। और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी,

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है। कभी लेट खाना खाओ, लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज़ कहूँगा, जो चीज़ आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज़्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने के पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफ़ी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं
0: जी।
1: बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, जैसे IBS बोला मैंने पहले,
0: जी, जी, जी।
1: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो
0: जी। तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
1: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज़्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
0: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
1: Correct.
0: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया
0: चल, छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएँ खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है किसी किसी को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए, कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी अफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीज़न कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी जी
1: सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत ना डाल लें, ये गड़बड़
1: करेक्ट।
0: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज़ को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: हाँ, अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज़ अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या
0: जी
1: है।
0: जी
1: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
0: जी
1: डायबिटीज़ पेशेंट को भी पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा
1: बिल्कुल।
0: करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने।

0: हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसे बटमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और NVM कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

0: नमस्कार युवा साथियों, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं गौरव राय। युवा साथियों, आज के इस विशेष अंक में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी युवा प्रतिभा से जो अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के बल पर निरंतर आगे बढ़ रही है। छात्र जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यही वह समय होता है जब सपनों को दिशा मिलती है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है और भविष्य की मजबूत नींव रखी जाती है। युवा साथियों, आज के युवा जो हैं वो केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज, तकनीक, खेल, लिखने की कला, संस्कृति और अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज के हमारे साथ हैं 12वीं कक्षा की होनहार छात्रा अक्षरा शर्मा। अक्षरा अपनी पढ़ाई, रुचियों, जीवन के लक्ष्यों, विद्यार्थियों के सामने अपने आने वाली चुनौतियों और उनके जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा करेंगी। उनकी सोच और अनुभव निश्चित रूप से अन्य युवा साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इस विशेष बातचीत में उनसे संवाद किया है हमारी सहयोगी रीना ने, तो आइए सुनते हैं ये विशेष और प्रेरणादायक कार्यक्रम।
1: स्टूडियो में हमारी एक युवा दोस्त हैं जिनका नाम है अक्षरा शर्मा। इन्हें लिखने का बहुत शौक है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं। अक्षरा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पढ़ती कौन सी कक्षा में है?
2: मैं 12th में पढ़ती हूँ।
1: 12th में पढ़ती है और लिखने का आपको शौक है?
2: जी।
1: इस शौक के अलावा और क्या क्या शौक रखती हैं?
2: मैं थोड़ा बहुत गाना गा लेती हूँ और बाकी मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना और लोगों के पर्सपेक्टिव जानने का बहुत शौक है।
1: जी, तो इसका मतलब घूमने फिरने का भी शौक है आपको?
2: जी जरूर। जी,
1: तो ये बताइए कि कविताएं आप लिखती हैं, है ना?
2: जी।
1: कविताएं लिखने का शौक आपको कब से हुआ?
2: मैं कविताएं, एक्चुअली बेसिकली कविताएं तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे, कुछ कुछ टॉपिक्स पे लिखने का जो ये कार्यक्रम चला आ रहा है वो स्कूल टाइम से चला हुआ है, मतलब बचपन से। लेकिन बेसिकली जब हम स्पीच वगैरह लिखते हैं तो उसमें जब आप टॉपिक के बारे में लिख रहे होते हैं तो साथ में हम कविताएं भी यूज करते हैं, तो तब लिखना। और साथ में मैंने एक्चुअली थोड़े टाइम से मैंने शुरू करा था कि मैं पोइट्री लिखना शुरू करी मैंने, तो हम जो है मैं मीडियम वगैरह पे डालती थी अपने ब्लॉग्स, तो तब मैंने अपने एक बार सर को बताया था, तो मुझे उस टाइम पे पता चला था कि सर ने बताया कि एक साइट है और वहाँ पे एक राइटिंग चैलेंज हो रहा है, तो उधर आप लिख सकते हो और लास्ट में आप कुछ दिनों के लिए, 30 days आई गेस 20 days के लिए आप वहाँ पे एक एक पोइम सबमिट करते हो और फिर लास्ट में वो आपको एक बुक कंपाइल करके दे देते हैं। तो मैंने बस वही करा और मैंने 27 को अपनी बुक सबमिट करी थी और 15 तक मुझे नोटिफिकेशन आ गया था कि आपकी बुक जो है वो सबमिट हो चुकी है, और फिर वो 11th March को मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी।
1: जी, बहुत अच्छी बात है अक्षरा, और इसके लिए आपको हम मुबारकबाद देते हैं।
2: धन्यवाद।
1: इतनी छोटी सी उम्र में, है ना, मतलब +2 में है आप, इस उम्र में हमारे जो युवा है उनकी सोच अलग रहती है, उनके शौक अलग रहते हैं। आपको ये शौक कैसे हुआ, कब हुआ?
2: एक्चुअली मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान का अपने लम्हों को या फिर जो उनके साथ हो रहा है, ऐसे हम कहते हैं आजकल बहुत फेमस है वर्ड लिव इन द मोमेंट, सो उन चीज़ों को समेट के रखना हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। कुछ लोगों को फोटोज खींचने का बहुत शौक होता है, मुझे भी है, लेकिन साथ साथ में हम ऐसा करते हैं कि कभी कभार, आजकल बहुत जेंजीज में ये चीज़ है कॉमन कि हमारा नोट सेक्शन जो होता है हम बहुत कुछ लिखते हैं जो हमारे साथ बीत रहा है या फिर, लेकिन कभी कभार हम उस चीज़ को अगर रिदमिक फॉर्म में ले जाएं, पोइट्री के फॉर्म में या फिर गज़ल की फॉर्म में, तो उस तरीके से भी हम अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और जब हम उन्हें बाद में पढ़ते हैं कभी कभार तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ये मैंने ही लिखा है।
1: बिल्कुल, ये मैंने ही लिखा है ना, ऐसा लगता है।
2: हाँ।
1: तो मतलब इसके लिए अक्षरा देखो, जब आप लिखने बैठते हो आपको एकांत, मतलब अकेला रहना होता है, चीजों को फील करना होता है, तो आप इन सब चीजों के लिए टाइम कैसे निकाल पाती हैं?
2: बेसिकली जब शायद से रात को आप पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो या फिर आपने पूरे दिन में क्या फील करा है, तो आई गेस रात का समय उस चीजों के लिए बेस्ट होता है। और कभी कभार तो पता है क्या होता है कि मैं सोई हुई हूँ और मेरे दिमाग में कोई ना कोई कविता बने जा रही है। एक दिन तो मैं सोई सोई उठ के मैंने पेन निकाला कि भाई मैं लिख जाती वरना मैं सुबह भूल जाऊंगी।
1: जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है। और परिवार की तरफ से भी इसमें आपको सहयोग मिलता है?
2: हाँ, एक्चुअली ये चीज नहीं पॉसिबल होती, मेरी दादी का बहुत सहयोग रहता है इस चीज में।
1: अच्छा।
2: मतलब आई गेस वो मेरे परिवार में ऐसे हैं जो मेरे, मतलब बोलने से पहले ही मेरी चीज़ों को समझ लेते हैं और बाकी मेरे घर में मेरे दादा चाचा और स्पेशली मम्मा सबका बहुत सहयोग रहता है।
1: बिल्कुल जॉइंट फैमिली है आपकी यानी कि बिल्कुल। और इन सब से आपको क्या सीखने को मिलता है, जैसे आप लिखती हैं तो क्या सीखती हैं आप
2: इन चीज़ों से? क्योंकि माना कि हर एक चीज़ को बहुत डीपली तक सोचना कभी कभार अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभार अगर हम चीज़ों को ज़्यादा गहराई से नहीं सोचेंगे, हर चीज़ की बुराई भी होती है अच्छाई भी होती है, प्रोज और कॉन्स दोनों के होते हैं, तो जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ को बारीकी से सोचना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत बार मेरे को ये चीज़ों के बारे में बोलते हैं इतना मत सोचा करो, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर आप चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे तो कभी ना कभी आप जल्दबाजी में सिर्फ एक चीज़ की बुराइयाँ देखोगे तो एक गलत फैसला ले सकते हो, और सिर्फ अच्छाइयाँ देखोगे तो आपको बाद में झटका लगेगा
1: जब आप उसकी बुराई देखोगे, है ना?
2: हाँ
1: बिल्कुल। और तो अक्षरा कभी आपने सोचा था कि मैं मतलब प्लस टू में ही एक किताब लिख पाऊंगी?
2: कभी भी नहीं सोचा था मैंने। इवन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं राइटिंग को कभी शुरू करूंगी। इवन अभी मेरा प्लान है कि इसको एज अ मेजर करियर ऑप्शन लेके चलने का, एज अ साइड हॉबी, या फिर हाँ साथ साथ में मैं कोई बुक लिख सकती हूँ या फिर यू नो कुछ भी पब्लिश कर सकती हूँ, पर एज मेजर थिंग नहीं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कि मैं कभी बुक लिखूंगी या फिर मेरा कभी शौक भी होगा लिखने का।
1: बिल्कुल। तो कितनी कविताएं लिखी हैं अभी तक आपने?
2: अभी तक मैंने वैसे जो पब्लिश हुई हैं वो तो 20-21 समथिंग है।
1: अच्छा।
2: लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लिखे नोट सेक्शन में।
1: अच्छा, पर 23 जो है वो बुक में है,
2: पब्लिश हुई है
1: जी। तो अभी हमें कौन सी अपनी कविता सुनवा रही है?
2: अभी आप बताओ कौन सी सुनाऊं मैं
1: जो आपके दिल को मतलब छू गई हो।
2: अच्छा,
1: वैसी वाली
2: एक वैसे मैं आपको सुनाती हूँ जो कविता मुझे मतलब काफी ठीक लगती है। ये रिश्ते भी क्या कुछ नहीं कह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बह जाते हैं, कुछ रिश्ते सिलंबम जैसे यूं ही जल्द उग जाते हैं, पर इन घड़ियों में जकड़ा आदमी इन रिश्तों को बलसा की लकड़ी की तरह कमजोर बना रहा है। क्यों ना फिर उन पुरातन रिश्तों को फिर तरह

0: को ताज़ा करें जिन्हें वक्त के साथ भुला चुके हैं, क्योंकि बरगद से हम इतनी जड़ों यानी रिश्तों से बंधे हैं कि याद करना ही भूल जाते हैं। पर याद करते हैं उन्हें जब रिश्तों की डोर हाथ से निकल जाती है या फिर वो रिश्ते निभाने वाले हमसे कोसों दूर स्वर्ग चले जाते हैं। वो दिन ना कभी देखना पड़े कि अफसोस की आग में जलना पड़े, जा मिल ले उन्हें जिन्हें खोने के बाद याद करना पड़े। आगाह हैं इस बात से हम कि हर दिन वक्त नहीं होता आपके पास, पर जिनके लिए कमाई की जा रही है हुजूर, उन्हें शोहरत नहीं आपकी मौजूदगी चाहिए। रोज ना बात कर पाए उन्हें, जन्मदिन त्योहारों पर याद कर लिया कीजिए, कहीं वो रिश्ते निभाने वाले कोसों दूर स्वर्ग ना चले जाएं। जरा याद फरमा कर लिया कीजिए, चाहे दगाही की जिन्होंने आपसे, जिनसे नाराजगी जताई आपने, जो ना माफी के काबिल हैं ना आपके दुलार के काबिल हैं, पर कहाँ लेके जाएंगी ये नाराजगी, अंत में तो होना पड़ेगा खुदा की रजा में राजी। सब भोगेंगे अपना कर्म के फल, आप चिंता ना करना, हम सब आपके संग। अपना कर्म निभाना, ये रिश्ते निभाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अफसाना रहे बेमहर, क्योंकि जिंदगी में चलता रहेगा रिश्तों का आना और जाना, तुम बस रुकना नहीं इन्हें निभाते चले जाना, क्योंकि फूल गुलदस्ते में ही अच्छे लगते हैं, दरवाजे खुले ही अच्छे लगते हैं और महफिलें अपनों संग ही अच्छी लगती हैं। कर लेना इजहार रिश्तों का, चाहे बुआ हो बिल्ली जैसी या मामा मंदर जैसे, कहीं बीत ना जाए वक्त इतना कि अंजाम रिश्तों की जनाजा बन जाए, तो झुक जाओ इससे पहले कि रिश्ते निभाने वाले कोसों दूर स्वर्ग चले जाएं।
1: बहुत ही खूबसूरत अक्षरा, और इतनी खूबसूरती से आपने रिश्तों को, है ना, भावनाओं को इसमें पिरोया है, बहुत ही बढ़िया। आप ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं लिखने को लेकर?
0: लिखने को लेकर एक्चुअली मेजरली तो मैं इसे एज अ करियर ऑप्शन अभी नहीं लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे जरूर लेके चल रही हूँ कि चाहे मैं जो कुछ भी करूँ, मैं साथ में लिखूंगी तो जरूर।
1: जी बिल्कुल, इसके लिए तो आप टाइम निकालेंगे ही।
0: हाँ, क्योंकि एक जिन चीजों को आप यू नो दिल से चाहते हो कि
1: जिनको करने से आपको खुशी मिलती है, वो जरूर हमें करने चाहिए,
0: और उन चीजों को आप नहीं छोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, और छोड़ना भी मत अक्षरा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से आपने हर चीज को लिखा है। और आपने पहले बोला था कि मुझे गाने का भी शौक है, तो कुछ गुनगुनाएंगे आप? थोड़ी सी दो पंक्तियां ही।

0: मजा, ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा।
1: बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्षरा। और अपने बारे में आप बताइए, इसके साथ साथ आपको क्या करना अच्छा लगता है, पढ़ाई में क्या फ्यूचर देखती हैं?
0: एक्चुअली फिलहाल मैं मेडिकल फील्ड, मतलब मेरा स्ट्रीम
1: साइंस
0: मेडिकल
1: स्ट्रीम
0: है,
1: है आपका?
0: इसलिए अभी तो मैं वही पढ़ाई कर रही हूँ, और साथ साथ में बाकी फ्यूचर प्लान्स देखते क्या होता है। फिलहाल मैं सोचती हूँ कि मैं रिसर्च में जाऊँगी, इसलिए बस इतना ही है फिलहाल तो। बाकी समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, जैसे
1: बिल्कुल।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लिखूंगी, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है।
1: तो फिर से अपनी एक कोई एक अच्छी सी कविता हमारे श्रोताओं को सुनवा दीजिए।
0: अच्छा, तो एक कविता है कि हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे टोबैको से रिलेटेड बहुत वो, यू नो, कि बहुत लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो
1: इन्वॉल्व
0: रहे हैं
1: आजकल तो हमारे युवा भी है ना, मतलब इसी
0: बहुत,
1: चीज में।
0: इसलिए मैंने उस पर भी एक चीज़ लिखी थी। मतलब मैंने इसे लिखा है तो शायद लोगों को ये लग सकता है कि मैंने इन चीज़ों को कहीं देखा हो या मेरे घर में ऐसा हुआ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे घर में ऐसे किसी ने किया हो, लेकिन मैंने इन चीज़ों को बहुत देखा है और इस चीज़ पर मैंने बहुत बार बात करी है, ऐसे स्कूल में स्पीच वगैरह में। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर एक बार लिखा था कि शायद उस तंबाकू की नौशी खुशी उन खानदान की अफरदों की खुशी से ज़्यादा थी, जिन खुश्क पत्तों की पुड़ियों में तुम सुकून की राह ढूंढते रहे, पर वो सुकून भरा धुआं तुम्हारे जनाजा को नतीजा दे गया। माना कि आप बहुत बेनफ्स हैं या मुखलिश हैं, पर आपको उस माँ की आंचल या उल्फत का भी फिक्रो ख्याल नहीं। ये रवैया करवट सा महसूस होता है और राय एहसान भरी महसूस होती है, पर इरादा और फैसला तो हमेशा आपका है ना, कि आप मुराकबा चुनना चाहेंगे या अपना खानदान को समय से पहले ही अपना जनाजा में रुलाएंगे। ये राय माने या रवैया भरे लफ्ज शायद जितनी आपको नहीं जिंदगी का मूल्य का ध्यान, अफसोस आपके खून को ही हो इसे बेशुमार का बकायदा थोड़ा ध्यान।
1: तो अक्षरा ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि आप अपनी जर्नी में अपना सारथी किसे मानती हैं?
0: एक्चुअली मेरे घर वाले तो इस जर्नी में सारथी हैं ही, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा इस चीज़ पे। दादी मेरे सारथी हैं बहुत बड़े, मम्मा, दादा, सब मेरे दोस्त मेरे बहुत अच्छे सारथी रहे हैं इस पूरी, यू नो, जर्नी में।
1: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है।
0: बिकॉज इवन मेरी एक डेडिकेशन है जो बुक में लिखी, तो मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मतलब मैं जब भी कोई नई कविता लिखती हूँ तो मैं उन लोगों को
1: उनमें भी
0: बताती
1: क्यूरियोसिटी
0: हूँ।
1: होती होगी कि अक्षरा ने आज क्या लिखा है, ऐसे बोलते हैं वो कि सुनवाओ, आप सुनाओ, आप क्या लिखा है
0: हाँ,
1: आपने?
0: मतलब मैं जब भी लिखती हूँ तो मैं उन्हें दिखाती हूँ कि मैंने कैसा लिखा है, तो वो कुछ बताते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ कोई गलती है तो बताओ मैं क्या
1: बताओ।
0: चेंज कर सकती हूँ, फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि अब मैं क्या नया लिख सकती हूँ, या फिर किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। इवन वो लोग भी बहुत अच्छा लिखते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा अक्षरा। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि इस उम्र में जहाँ बच्चे आजकल कई अलग तरह के शौक रखते हैं, आपको लिखने का शौक है। और बताइए, जो कुछ आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहती हैं, हमारे युवा साथियों को कुछ कहना चाहती हैं?
0: मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो घर वाले हैं, ऑफ कोर्स वो अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करेंगे,
1: बिल्कुल।
0: कि चाहे वो जो भी करना चाहें, किसी भी लाइन में जाना चाहें, किसी भी फील्ड में जाना चाहें, लेकिन हमारे, यू नो, जर्नी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे, मतलब मेरे को मेरे सर ने भी सपोर्ट करा और मेरे फ्रेंड्स ने। तो मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एक दोस्त बुरे होते हैं और आपको अच्छी, यू नो, फील्ड में सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे सपोर्ट करा, हमेशा जब भी मैंने कोई पहली नई कविता लिखी तो वो सबसे पहले आए और मैंने उन्हें सुनाया। तो मतलब एक जर्नी में अगर आप लिखो भी और आपको साथ में, यू नो, अप्रिशिएट करने वाला या आपकी चीज़ों को सुनने वाला कोई ना हो, तभी उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं
1: मतलब नहीं
0: रहता है।
1: रहता जी,
0: इसलिए दोस्तों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड
1: अच्छे
0: आई'm,
1: दोस्तों का होना।
0: हाँ, अच्छे दोस्तों का
1: क्योंकि अगर
0: होना।
1: देखिए, अगर आप लिखती हैं, आप उन्हें सुनाती हैं और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं कि नहीं, क्या लिख रही है, क्या बैठी रहती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करते हैं।
0: ज़रूर, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे भी दोस्ती मिले, ऐसे भी दोस्त मिले मुझे
1: मिले
0: कि जिन्होंने शायद से उसको, मतलब, डिमीन करने की कोशिश करी, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जो
1: जो
0: मेरे
1: आपके
0: को,
1: साथ रहते हैं।
0: हाँ,
1: तो ऐसे दोस्तों को क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं बस ऐसे दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मिले मुझे, लेकिन आई गेस, एक्चुअली हमारा ग्रुप है उसका नाम है नॉकर्स रखा है हम लोगों ने।
1: नौकर्स,
0: हाँ,
1: ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा, मतलब कि जैसे स्कूल में सेरेमनीज वगैरह होती हैं, तो मतलब वो कुछ बच्चे होते हैं, मतलब जो हमेशा वो चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, काम
1: काम करते
0: वगैरह
1: हैं,
0: करने में। तो
1: अच्छे
0: उससे हमने,
1: अच्छे
0: मतलब, थोड़ा ह्यूमरस वे में, थोड़ा ऐसा
1: तभी है।
0: फनी वे में हमने
1: पर
0: उसका
1: काम
0: नाम,
1: करना तो अच्छी बात होती है ना।
0: काम, हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी भी हैं, मतलब स्कूल में चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। इवन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छे वे पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर
1: कर
0: लेती हूँ,
1: सकती
0: मैनेज
1: हूँ।
0: कर लेती हूँ. तो मतलब वो चीज़ें हमने स्कूल से सीखी हैं. तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर ये दोस्त नहीं होते तो मैं किसी को नहीं सुना पाती अपने यू नो ये इमोशंस जो मैंने अपने जो एक्सप्रेस करे, ये नहीं कर पाती.
1: बिल्कुल. और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप कुछ लिख रहे हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप दूसरों को सुना सकें, है ना, कि अच्छा लिखा है नहीं लिखा है. नहीं तो कई लोग तो बेचारे लिखते रहते हैं, किसी को सुना भी नहीं पाते, तो वो वैसे ही रहते हैं घर पर, डायरी में रहेंगे या मतलब बंद रहेंगे. तो ये भी बहुत बढ़िया बात है अक्षरा. और चलते चलते हमारे श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को कौन सी कविता सुना रही है?
0: मैं एक कविता सुनाऊंगी अब जरूर, क्योंकि वो कविता जो है मेरे दोस्तों ने भी साथ में लिखी है.
1: जी बिल्कुल.
0: स्वप्न है या सत्य है ये मैं ना जान सकूं, इतने आगे आ गई कैसे इस पर विश्वास करूं. सपने थे जो कभी, आज वो हकीकत हैं. जो कभी सोच से परे लगते थे ख्वाब, वो आज रोजमर्रा की शामिल हैं. कभी कभी इत्तेफाक से फरीब चीजें भी हकीकत बन जाती हैं. तो ना सोचेंगे मुमकिन नहीं, क्योंकि जहां जो होना होता है वो होके रहता है. यूं हर चीज को नामुमकिन मान कर मत बैठ जाना, क्योंकि सपने सच होते हैं कभी कभी इत्तेफाक से. बोलने वाले बहुत होंगे कि तुम काबिल नहीं इस कामयाबी के, शायद खुद भी खुद पर शक कर बैठो. लेकिन जैसे हर रोज अलार्म बजते ही 2 मिनट कह देते हो ना, बस वैसे ही 2 मिनट सोचकर अपनी सलाहियत पर बिना शक किए लग जाना उस मकसद के पीछे. चाहे कभी समझ ना आए कि क्या वो बुनियादी मकसद है, तुम लहरों के बहाव सा बहते चले जाना. फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम आईना देख के कहो, स्वप्न थे जो कभी, आज वो हकीकत है.
1: बहुत ही खूब. और सपने ज़रूर पूरे होते हैं अक्षरा, अगर आप उन्हें पूरी शिद्दत और लगन से पूरा करें, है ना. और आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे युवाओं को इतनी अच्छी बातें बताई, अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा. और बहुत बहुत धन्यवाद.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के प्रसारण के कार्यक्रम का विवरण। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सुरमई सांझ। 6:30 पर कार्यक्रम होगा मौजां ग्राइंडियां। 7:10 पर सुनिएगा खेतीबाड़ी कार्यक्रम। रात्रि 8:00 विविध संगीत का कार्यक्रम सब रस प्रस्तुत किया जाएगा।

रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार आप सुनेंगे। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा गूंज पहाड़ों की, जिसमें आप सुनेंगे हिमाचली गीत और लोकगीतों का कार्यक्रम। रात्रि 10 आज आप सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। शाम 7 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, रात्रि 9 अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11 आकाशवाणी दिल्ली से ही हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में हुए बदलावों से शासन और प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए कहा कि जनता का विश्वास सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित व समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज शिमला में उनसे मिलने आए सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 137 करोड़ रुपए की लागत से चैलचौक जंजहली सड़क को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 83 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना को CRIF के तहत मंजूरी मिली है और इसके पूरा होने से क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बरसात के नुकसान के लिए भरपूर सहायता दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत किए हैं। वे आज शिमला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय पर कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेज रही है और उसी के आधार पर केंद्र द्वारा फंड जारी किया जाता है। इस दौरान सुरेश ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और मनरेगा व एमपी लैड के लंबित कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी या गड़बड़ी संबंधी कुछ एक मामले सामने आए हैं जिनका निपटारा कर दिया गया है।
1: आज हमारी दिशा की बैठक थी और इसमें हमने लगभग 40 के करीब जो और केंद्र और स्टेट की जो योजनाएं हैं उनका रिव्यू किया। काफी प्रोग्रेस देखने में हमको मिली है। मैंने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और अभी से हमको उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और अभी जो RDSS करके एक विद्युत विभाग की स्कीम आई है जिसमें जहाँ पर भी बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या है या ट्रांसफार्मर्स को चेंज करने की आवश्यकता है, 3 फेज लगाने की आवश्यकता है, उसमें बहुत अच्छा काम देखने को मिला है।
0: इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8,50,000 लोगों ने अपना पता अपडेट करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया है। ऐप के जरिए एक ही क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। विकसित

0: वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित युवा इन दिनों लाहौल स्पीति जिला के सीमावर्ती गांवों के भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चरण दो के चौथे दिन की शुरुआत योग और ध्यान सत्र से हुई। इससे युवाओं में स्वास्थ्य और सामूहिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लिपचा, लांजा, हिक्किम और कौमी गांव का भ्रमण किया। युवाओं ने यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली को करीब से जाना। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका शुक्ला को पत्र लिखकर अपने विचार और आकांक्षाएं भी साझा की। वहीं तीरंदाजी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांव के युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज सांसद सुरेश कश्यप को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नंदा कर्ण नंदा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जाखू, यूएस क्लब, बैनमोर और कनलोग क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को वाहन परमिट से राहत दिलाने की मांग की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म उमराव जान से। इस गीत को गाया है तलत अजीज ने और गीत को लिखा है शहरार ने और संगीत है खयाम का।

0: राहुल, क्या बात है? आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: This March, make every drive count.
4: Why not make a bold move this month?
3: Upgrade to the Bolt Berlino, a drive that feels bolder, smoother, and makes every journey special.
4: Presenting your Berlino, the perfect combo of style, technology, and safety. EMI starting at just 3,999 rupees per month.
3: And yes, it's available at an effective price of rupees 5.59 lakh, only for a limited time. Plus, stock is limited. So hurry.
4: With a 360-degree camera and head-up display, stay connected every moment with SmartPlay Pro Plus.
3: Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa.
6: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: मासूम इस फिल्म में लीजिए सुनिए अनूप घोषाल का गाया हुआ ये गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत है RD बर्मन का।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: चित्रलेखा इस फिल्म में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत। इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत है रोशन का।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

0: मौजा ग्राइंदियां कार्यक्रम सुनकर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहन जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों आज टियाले पर मंजसू की केसरू तो केसरू जी राम राम।
1: बड़का चाचू जी तुम भी राम राम और कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां सुनने वाले सारे किसान भाई बहन जो भी केसरू की दुआ जोड़ी करी राम राम।
0: बिल्कुल
1: और मौजा जड़ी इनसे लगी हैं उन टियाले पर कने जानकारियां दा पिटारू भी यहाँ खोलना है कने सोगी ही मनोरंजन भी आज करवाना है
0: जी जी बिल्कुल।
1: बड़का चाचू वेले दा हुण थोड़ी दी गल बात कर लेंदे न कि भई अजकल मौसम जड़ा सा बदलवा दा है ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: की बरखा भी होवा करदी इस दा जड़ा लाभ है से सारे ने लेना है ना।
0: जी जी जी जी जी
1: कने इसते बाद जानकारी दा पिटारू भी अज यहां खोलना है कने जानकारियां च किसान साथियों आज यहां जड़ी जानकारी लेके आए हन से यहां डेयरी दे बारे च लेके आए हो कने कुछ मिश्रित खेती दे बारे च जड़ी है से गलबात हां करनी है। खेती कने पशु पालन साडे देश दी रीढ़ दी हड्डी मन्या जांदा है कने इक किसान जल उठदा ना सवेरे तां सारे ते पहले से जुटी आंदा है अपने खेतां दी जुताई बुआई कने सिंचाई वास्ते कने फसलां दी देखभाल कने कटाई जे काम जड़े से रोज जड़ा ऐसे किसानां दे चली रहंदे हन है ना जी। कने इस कने ही दिखा हूँ डेयरी का काम भी करना अजकल दे टाइम च बोलते ना कि आसान काम नहीं है बड़का चाचू जी। पशुओं जो जड़ा समय पर चारा देना उन्हां दी साफ सफाई का ध्यान रखना गुराणा की भी साफ सफाई का ध्यान रखना कने दिखा दुध कढ़ना कने तिसते उन्हां दा स्वास्थ्य की देखभाल करना भी बड़ी ही मेहनत का काम हुंदा है।
0: बिल्कुल कने दिखा कि बोलते ना कि हर मौसम का के भी अपना अपना महत्व है ना
1: जी।
0: दिखा कि जियां मौसम बदलदा उस हिसाब ने साढ़े जेडे काम काज के तरीके कहन उस भी सू बदलाव कहन भी लाना पाते हैं। हूँ दिखा कि यह गर्मी का मौसम है आने वाला बरसात का मौसम भी लगभग शुरू हो ही गया है ना। तो दिखा कि सू जी पशुओं की गराला कहन साफ सफाई रखना चाहिए है और जलू ज़्यादा धुप होंगी है ज़्यादा गर्मी होंगी तो पशु जो छाए च बढ़ना चाहिए और खास तौर पर जोड़े साढ़े नवजात जियाँ बछड़िया बछड़े होंगे ना उन्होंने सू जो विशेष ध्यान के भी रखना पाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जियाँ कि गबड़ी गाइया होंगे ने या फिर सूईया गाइया होंगे तिना का भी खास ख्याल रखना पौधा है तिना पानी जोड़ा इसे मौसम के अनुसार देना है ठंड है तो थोड़ा कोसा पानी देना है ना जी।
0: बिल्कुल
1: तो ये छोटी छोटी गल् जी इनसे किसान अगर ध्यान च रखेगा तो पशुधन जोड़ा सा ठीक रहा है और अच्छा जोड़ा दुध भी दिता है।
0: बिल्कुल दिखा कि असा तो जो किसान है अपनी खेती बाड़ी के कने कने और जियाँ कई तरह के व्यवसाय जो कि भी करता है और कई जियाँ छोटे स्तर पर डेयरी का काम करते हैं कई बड़े स्तर पर डेयरी का काम करते हैं है ना। तो दिखा कि जियाँ हाँ कोई भी काम करा करते हैं तो उदा प्रशिक्षण लेना के भी बड़ा भारी जरूरी है और प्रशिक्षण लेकर अगर हाँ कुछ भी काम जो करते हैं तो साढ़े ताई के भी आसान बनी जाता है और जियाँ जियाँ अहाँ कमे च अनुभवी बनते जाते तो सू पता लगता कि कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत थी और कुछ कमी के भी रह गई है। और खास तौर पर जियाँ असा का जोड़ा किसान डेयरी पालन का काम करा करता या छोटे स्तर पर करा करता भले चाहे बड़े स्तर पर करा करता था जेडे पशु चिकित्सक होंगे उन्होंने सोगी बिल्कुल संपर्क च रहना चाहिए। कई बार क्या होंगे कि पशुओं च मतलब कई तरह की बीमारियां भी लगी जाती है ना तो समय रेंदे अगर अहाँ डॉक्टर के संपर्क में होंगे तो साड़ा जोड़ा मतलब नुकसान होने के भी बची सकते हैं।
1: बिल्कुल और दिखा किसान भाई साढ़ा इतना जागरूक हो चुके हैं कि किसान जो दिखी करी से समझ ही आता कि यह सा पशु जोड़ा ठीक नहीं लगा था है कोई भी रोग का लक्षण नज़र आता है तो फटाफट जोड़ा इसे पशु चिकित्सालय जाकर जरूर इन्हों का जोड़ा इसे कर लेना चाहिए इलाज टाइम पर कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल कहना है गल्ला बातें किसान साथी अगे भी जा रहे हैं पुराना हाँ शामिल करना प्यारा दिया लोक गीत सारे सुनते रली मिलिए लोक गीत
1: जी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
6: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: This June, make every drive feel smoother and

0: Every journey special. Presenting the Bold Baleno. The perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: किसान साथियों कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिए तुहां सुनया है लोग गीत और कुछ एक स्नेह जड़े से भी तुहां तक पुजाया ना हा करें दिखा जानकारी दे सोगी सोगी जड़े स्नेह उन्दे से भी बड़े जरूरी होंदे न बड़का चाचू दिखा उन टियाले पर हां लोग जानकार सुन ली थोड़ी गल बात जड़ी से कर लेंदे ना
3: बिल्कुल कने दिखा कि अगर हां कई तरह दी जड़ी खेतीबाड़ी करदे न कई तरह दे अपने खेत खलाना च फसला कन भी लगांदे न
2: जी
3: अगर अहां मिश्रित खेती जो अपनांदे तां इसते भी मते सारे जेड़े फायदे कैन भी असां जो मिल सकदे न
2: हैना
3: अगर जियां दिखा कि इस बारी तां मैं पता क्या कीता केसरु जी कि जियां मक्की दी बिजाई कीती तां मक्की दी बिजाई करने करने मैं रोंगा दी फसल भी लगाई है और कुछ बेलदार सब्जी भी करने लगाई थी
2: जी,
3: इस क्या होंदा कि दिखा कि अगर साड़ी एक फसल खराब हुई जाती ना तो दूसरी फसल दे भरपाई के भी हो सकती है
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: और खास तौर पर दिखा कि जिया हूँ बरसात भी उतरी पई लगभग और उतरने वाली भी है ना तो दिखा कि अहां जी अपने जेडे मक्की की बिजाई कर दी होर जी बेलदार जी सब्जी कहने भी अहम अपने खेत खलाना च लगाई हैं तो सानू जी दिखना चाहिए कि अगर ज्यादा बारिश हुई है ज्यादा बरसात हुई है तो सानू अपने खेत खलाना च आना जाना चाहिए कि दिखा कई बार क्या होंगे कि यहाँ तो प्रबंध जरूर बनाए होंगे जेडे जल निकासी दे लेकिन कई बार ज्यादा बरखा होने होंगी तो एक ही साइड जो पानी के भी ढली आता है और खेत लुड़ने का भी जो खतरा के भी रहा है
2: बिल्कुल तुम ठीक गला दे कि संजय सवेरे थोड़ी देर आंजो खेतों जाकर नज़र मारना चाहिए क्योंकि हम बरसात हुआ करती और बरसात ऐसा होंगे कि पानी का बहाव कई बार बहुत तेज़ होंगे जिसकी वजह बीड़ा साड़ियाँ टूटी आदियाँ कने फिर जी फसल है सड़ी आती है तो भी समय समय पर सू जाना चाहिए अपनी बीड़ा दोबारा तो बनाना चाहिए कने खेतों के जो अहां साइडा च नालियाँ बनाते सब भी अच्छी गहरियाँ बनाना चाहिए
3: बिल्कुल और दिखा कि असा जरा किसान है भी कुछ जी जमीन होंगी है भी खेती करने योग्य होंगी है ना और कुछ ऐसी भी जी खड़ैत्र जमीन तो वह तो सू जो पौधा रोपण के भी करना चाहिए मतलब अच्छे अच्छे जे पौधे लगाना चाहिए ताकि एक तो जी गाशनी होनी गा के भी साढ़े माला बछू के कमे आई जाना है ना और जे अहम पौधे लगा करते हैं तो से साढ़े पर्यावरण बचाने अपना जो सेवकन भी दे सकते हैं लेकिन दिखा कि अहम जो पौधा लगाना है ना तो लगाना ही सारा वो नहीं है मतलब फर्ज नहीं है उस पौधे जो हाँ तलू तिकर देख रेख करनी जलू तिकर से माला बच्छू की पहुँच दे दूर ना हुई आए
2: है ना बिल्कुल
3: तो ये जेडे छोटे छोटे काम लेकिन हिन बड़े कमे दे है ना
2: कमे दिन करना चाहिए और पर्यावरण का भी ख्याल सांझो रखना चाहिए है
3: तो किसान साथी गल्ला बातें आगे भी जा रहे हैं ना
2: बिल्कुल
3: फिर यहाँ शामिल करना एक प्यारा दे लोक गीत सुनते ने लोक गीत
2: जी

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
3: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
4: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
5: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: FM 103.4 में हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वागचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के

0: अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Uttar Pradesh, 14 students lost their lives after a massive fire broke out at a coaching center located inside a commercial complex in Lucknow's Aliganj area this afternoon. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. The blaze reportedly started inside the institute building and spread rapidly through the complex, which houses coaching centers, showrooms, and a gaming zone, triggering panic among students. Fire brigade teams, police personnel, and district administration officials are conducting rescue and evacuation efforts. Talking to media, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak said that 14 students aged between 16 to 18 years who were present at the animation center in the building lost their lives. He said that firefighters are searching for students in the corners, washrooms and other areas of the building. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath spoke to the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home, directing them to ascertain the cause of the fire and closely monitor the ongoing rescue and relief operations. He said those found responsible for the incident would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief of the loss of lives in the fire mishap in Lucknow. In a social media post, the President said that death of people in the horrific fire accident is extremely heartbreaking. She expressed condolences to the bereaved families and prayed for the swift recovery of the injured. Vice President also paid condolences to the bereaved families and prayed for the swift recovery of the injured. Prime Minister Narendra Modi today expressed grief over the loss of lives in a fire mishap in Lucknow at Uttar Pradesh.

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहन जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथी आज टियाले पर नमेंजसो की केसरो ता केसरो जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू राम राम तो अंजो भी राम राम कने कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे किसान कने बागबान भाई बहन जो भी केसरो दी राम राम।
0: बिल्कुल ता किसान साथियों आसा दोनों ट्याले पर आई पुजन कने ढेरो सारी जेडी जानकारी कने बे यहां अपने किसान भाई कने साझा करने न और जानकारी कने कने मीठे मीठे कने प्यारे प्यारे लोकगीत भी उन तक रहा पहुंचाने न।
1: बिल्कुल कने बड़का चाचू दिखा आज जेडी जानकारी यहां लेकर आए हन ट्याले दे माध्यम ने सह दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दे बारे च।
0: जी जी
1: ते किसान साथी तुहां सारे इस योजना दे बारे च जानदे ते हन फिर भी यहां टाइम टाइम पर अपनी इन योजना दे बारे च बार बार दसदे रहंदे हन। ता दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना जेड़ी है से भारत सरकार दी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण में बिजली दी उपलब्धता बढ़ाना, बिजली वितरण व्यवस्था जो मजबूत बनाना कने किसान कने ग्रामीण परिवार जो बेहतर विद्युत सुविधा प्रदान करना।
0: बिल्कुल कने इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2014 च भारत सरकार दे विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई थी।
1: जी
0: भारत दे ग्रामीण क्षेत्र च लंबे समय तक बिजली दी कमी एक बड़ी समस्या रही है कने कई ग्राम च बिजली नहीं हुंदी थी।
1: बिल्कुल
0: ता इना सारी समस्या जो दूर करने ताई भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत के भी की हुए कने किसान साथी इस दे जेड़े उद्देश्य ने इस दी गल की जाए ता सारे ग्राम तक के भी बिजली पहुंचाना है कने कृषि और घरेलू बिजली लाइना जो के भी अलग करना है। ग्रामीण क्षेत्र च बिजली वितरण प्रणाली जो मजबूत बनाना कने बिजली दी चोरी और नुकसान जो के भी घट करना है।
1: बिल्कुल
0: ग्रामीण परिवार जो ज्यादा समय तक और बेहतर के भी गुणवत्ता वाली बिजली के भी उपलब्ध कराना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल और विशेषता की गल की जाए किसान साथियों ता दिखा फीडर जो अलग करना बड़ी विशेषता है। इस योजना के सारे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि कने घरेलू उपभोक्ता ताई अलग अलग बिजली फीडर बनाना है कने इस ते किसाना जो सिंचाई तक निर्धारित समय पर बिजली मिली सके कने घरेलू उपभोक्ता जो भी नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण क्षेत्र च पुराने ट्रांसफर तार कने सब स्टेशन जो ठीक किते जांदा है।
0: बिल्कुल कने नए जड़े ट्रांसफार्मर न और बिजली लाइने के भी लगाई गई न ताकि बिजली आपूर्ति के भी ज्यादा ठीक रह सके।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कने मीटरिंग व्यवस्था दे बारे च गल की जाए ता योजना दे तहत बिजली फीडर ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता दे स्तर पर मीटर कैन भी लगाए हुए न।
1: जी
0: इससे बिजली दी खपत दा सही रिकॉर्ड के भी रखना और नुकसान जो के भी घट करना कने ग्रां च जियां विद्युतीकरण ता दिखा कि भी जिना ग्रां च बिजली नहीं थी उत्थू बिजली के भी पहुंचाने ताई नई लाइने और जरूरी जड़ा ढांचा के भी तैयार किया गया था।
1: बिल्कुल
0: कने इस दे जड़े लाभ दी गल की जाए ता सिंचाई ताई पर्याप्त बिजली उपलब्ध हुई हो कने खेतरा दी लागत घट हुई है, कृषि उत्पादन बढ़ाने च सहायता मिली है कने इस दे जड़े ग्रामीण परिवार जो क्या लाभ मिले ता दिखा भी घर च बेहतर रोशनी उपलब्ध हुई है कने बच्चे जो पढ़ाई च के भी सुविधा मिली हुई है।
1: बिल्कुल
0: कने छोटे उद्योग और स्वरोजगार दे अवसर कन भी बड़े हैं।
1: बिल्कुल
0: कने ग्रामीण अर्थव्यवस्था दे लाभ दी गल की जाए तो ग्रां च रोजगार दे अवसर कैन भी बड़े न, छोटे व्यवसाय और उद्योग जो प्रोत्साहन के भी मिले है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा च के भी सुधार होया कने डिजिटल सेवा दा विस्तार होया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण च महत्वपूर्ण भूमिका के भी निभाई है। इस दे कई कार्य और उद्देश्य जो नई योजना कने बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम च शामिल किते गए है। योजना दी उपलब्धियां दे आधार पर ग्रामीण क्षेत्र च बिजली आपूर्ति और वितरण व्यवस्था जो और मजबूत करने दे प्रयास कन भी जारी हन।
1: जी बड़का चाचू ता बड़ी अच्छी जानकारी जेड़ी ऐसे किसान भाइयां तक कहां पहुंचाई है कने इस जानकारी दे बाद हुन लोक जानकारी दी बारी है ना जी।
0: बिल्कुल

0: किसान अहाँ कन्ने जुड़ा कर देन ओवा कर देन इन्हा कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी
0: जी। सारे ते पहले अपना नाम दसा कने कुतु तुहां दे घर न?
1: मेरा नाम है जीवन सिंह राणा, घर आंदे घर रोड पोंदे नगरोटा सूरिया ब्लॉक तहसील ज्वाली।
0: जी जीवन सिंह जी, तुहां खेतीबाड़ी करदे जी?
1: हां जी बिल्कुल जी करदे जी।
0: तो जी दिखा खेतीबाड़ी करन ताईं अगर हां गल करिए ता तुहां वाल कितना के जमीन दा जड़ा रकबा जिस तुहां खेती करदे हन?
1: असल इस वेले 30 कनाल रकबा जी।
0: ये सारा ही खेती करने योग्य होए?
1: हां जी सारा जी खेती करने योग्य।
0: अच्छा इस वेले दी अगर हां गल करन तो तुहां 30 कनाल विच जड़ा सा क्या क्या लगाया इस वेले?
1: इस वेले हां 30 कनाल च 25 कनाल च तां लगभग ड्रैगन लगाई ता हुन, पहले लगाया कोई 5-6 कनाल ता हुन सारा बाकी करी ता ड्रैगन कमलम बोलदे सी ओ।
0: अच्छा अच्छा ता आहां दे सुनने आले ए दसा कि जड़ा ड्रैगन दा जड़ा तुहां बगीचा जड़ा लगाया ए ड्रैगन जड़ा सा क्या चीज है? हां जे सुनने आले जड़ा सा दसा तुहां कने कुछ तरीके कने जड़ा सा इदी हां शुरुआत जड़ी सा हां कर सकदे हां जलो इदी हां खेती करनी है?
1: ड्रैगन जड़ा है फल जड़ा है सा बेसिकली अमेरिका ते आया, फिर अफ्रीका ते कने इंडिया च आया, ए बंगाल च सारे ते पहले, फिर आंध्रा गुजरात महाराष्ट्र वगैरह जिन्हें च थोड़ी ज्यादा करदे खेती कने साढ़े इत्थों नजदीक पंजाब च करदे।
0: तो जीवन जी जियां ड्रैगन दी अगर हां गल करा करदे इंदा शुरुआती तौर पर इस चीज की पौध लगाना पौंदी या कोई बीज
1: होंदा? हां जी हां जी पौधा लगदा जी।
0: अच्छा पहले कोई पनीरी लगाना पौंदी?
1: नहीं जी कलम जी पौधा लगा दे जी, कलम कट्टी के लगी हुई जी, पहाड़ी से गलाई सकते जी हाल एक छू होंगी ना जी।
0: हां जी
1: इतनी प्रजाति है।
0: अच्छा
1: छू प्रजाति है तुसी अगे अगे थोड़ा ग्राफ्टेड करी थे जरा ऐसा अमेरिकन रेड इलाइस रेड जरा ऐसा अमेरिकन ब्यूटी लगाया सा रेड है अंदर से भी लाल है कहना बाहर से भी लाल है।
0: अच्छा अच्छा भी प्रजातियां होनी?
1: हां जी बढ़िया विभिन्न विभिन्न प्रजातियां होनी पर आहां काफी ज्यादा घूमे फिरे कने मतलब सा जो अच्छी लगी।
0: अच्छा जी तुहां दस्या कि 25 कनाल च तुहां इस वेले छड़ा सा करा करदे ने ड्रैगन दा काम?
1: हां जी पहले लगाया सर, बाकी वाला तो पहले तां लगांदे कोई 3 कनाल च था पहले लगाया सर, कोई 450 बूटा लगाया।
0: अच्छा
1: 25 पिलर
0: जी। अच्छा जी सबसे पहले दसा तो हाँ दसिया तो हाँ पिलर है या खेत है इसकी तैयारी कुछ तरीके करने करनी शुरुआती तौर च क्या करना पौंदा चलो हाँ खेती करनी है?
1: सब तो पहले तो ये जो है उत्सव होंदा जी थू पानी नहीं खड़ोना चाहिए 24 घंटे जिस पानी खड़ोई जाता पानी नहीं खड़ोना चाहिए। दूसरा शेडो नहीं होना चाहिए मतलब दिशौरी जिसे बोलते पहाड़ी है सा।
0: हाँ जी
1: शेडो नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा
1: कहने गर्मी का पौधा है।
0: हाँ जी
1: लगी सकता। हाँ जी पानी की सी बड़ी घट जरूरत होगी।
0: अच्छा जी तो दसिया की पिलर ये क्या कोई सीमेंटे के बन गए?
1: हाँ जी आरसीसी पिलर एक्चुअली इसका वजन ज्यादा हो जाता ना जी काफी बड़ा हो जाता है मतलब 7 फुट बनाते हैं। हाँ लंबा फुट जमीन च होता जी मैला गड्ढे तीन गड्ढी सी कहना उपर एक स्ट्रक्चर होता आरसीसी सीटर का ही।
0: अच्छा
1: एक्चुअली जी उम्र जी ऐसा कोई 20-25 साल है तो इस कारण स्ट्रक्चर अच्छा बनाना पौंदा बढ़िया करके एक वन टाइम एक बार इन्वेस्टमेंट करना पौंदी है।
0: हाँ जी
1: तो ये 4 पौधे लगते एक पिलर पर तो ये 4 पौधे कने पिलर लगाए

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कने कार्यक्रम खेतीबाड़ी इतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया बिपिन कुमार प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह हुन अपने ट्रायल दस्त से बड़का चाचू
1: कने केसरो जुदिया अनुमति
0: अच्छा जी जय हिंद, जाए हिंद।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कई महाविद्यालयों को बंद करने के फैसले को बताया जनविरोधी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के तहत संतोषजनक कार्य न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत भरपूर मदद दे रही केंद्र सरकार। और मिड डे मील वर्कर्स का शिमला में प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हिमाचल को साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर के हरनोड़ा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह दौन में ब्यास नदी और शिमला जिला में सतलुज नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नई इको टूरिज्म नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा भी आरंभ की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि 137 करोड़ रुपए की लागत से चैलचौक जंजहली सड़क को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 83 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना को सीआरआईएफ के तहत मंजूरी मिली है और इसके पूरा होने से क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी सहित प्रदेश के कई अन्य महाविद्यालयों को बंद करने के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों को बंद कर सरकार ने स्थानीय युवाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों पर सीधा प्रहार किया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्र संख्या का बहाना बनाकर स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की बजाय छात्र संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता कॉल नेगी के नेतृत्व में ननखड़ी से आए एक प्रतिनिधि

0: मंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के विस्तार और पहुंच को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दूध संग्रहण केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों से पूरा दूध नहीं खरीदा जा रहा और न ही उन्हें समय पर भुगतान किया जा रहा है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज शिमला में मंडी व ऊना जिलों में एचपी शिवा परियोजना की प्रगति के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने मंडी जिले के 98 क्लस्टरों में करीब 1085 हेक्टेयर क्षेत्र और ऊना जिला के 12 क्लस्टरों में करीब 224 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित परियोजना गतिविधियों का ब्यौरा लिया। जगत सिंह नेगी ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को 30 जून तक जनक प्रगति न होने की स्थिति में ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाने चाहिए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित युवा इन दिनों लाहौल स्पीति जिला के सीमावर्ती गांव के भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चरण दो के चौथे दिन की शुरुआत योग और ध्यान सत्र से हुई। इससे युवाओं में स्वास्थ्य और सामूहिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लेपचा, लांजा, हिक्किम और कौमी गांव का भ्रमण किया। युवाओं ने यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली को करीब से जाना। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका शुक्ला को पत्र लिखकर अपने विचार और आकांक्षाएं भी साझा की। वहीं तीरंदाजी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांव के युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बिलासपुर जिला के 22 चयनित गांवों में विकास कार्यों के लिए 20-20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में पंचायतों को पूरा सहयोग दिया जाए ताकि विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जा सकें। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बरसात के नुकसान के लिए भरपूर सहायता दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत किए हैं। वे आज शिमला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय पर कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेज रही है और उसी के आधार पर केंद्र द्वारा फंड जारी किया जाता है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और मनरेगा व एमपी लैड के लंबित कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी या गड़बड़ी संबंधी कुछ एक मामले सामने आए हैं जिनका निपटारा कर दिया गया है।
2: आज हमारी दिशा की बैठक थी और उसमें हमने लगभग 40 के करीब जो और केंद्र और स्टेट की जो योजनाएं हैं उनका रिव्यू किया। काफी प्रोग्रेस देखने में हमको मिली है। मैंने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और अभी से हमको उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और अभी जो RDSS करके एक विद्युत विभाग की स्कीम आई है जिसमें जहाँ पर भी बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या है या ट्रांसफार्मर्स को चेंज करने की आवश्यकता है, 3 फेज लगाने की आवश्यकता है, उसमें बहुत अच्छा काम देखने को मिला है।
0: मिड डे मील वर्कर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल की। इस दौरान सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी, ग्रेच्युटी, पेंशन और 12 महीने का वेतन देने जैसी मांगों को लेकर शिमला में टॉलेंट से सचिवालय तक रोष रैली निकाली। मिड डे मील वर्कर्स ने केंद्र व राज्य सरकार पर उनके शोषण का आरोप लगाया। यूनियन की राज्य महासचिव शांति देवी ने मिड डे मील वर्कर्स को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 12 महीने का वेतन देने और नियमित करने के लिए नीति बनाने की मांग की है।
3: मांग ये थी कि हमें हरियाणा की तर्ज पे वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन में हमें लिया जाए, 25 बच्चों की शर्त को खत्म

0: किया जाए, छुट्टियों का प्रावधान किया जाए, साल में 2 वर्दी दी जाए और मेडिकल सुविधा दी जाए। 3-4 महीने के बाद वेतन दिया जाता है, जिससे कि हमारा घर चलाना मुश्किल होता है।
1: यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
2: 2004 से लेकर के ये स्कीम मिड डे मील वर्कर की चली है, तब से इसमें अब तक सरकार ने कोई भी संशोधन नहीं किया है, इसलिए हम ये धरना देने के लिए मजबूर हुए। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम आगे और उग्र आंदोलन तैयारियां करेंगे और सरकार का अच्छी तरह से कठोरता से सामना करेंगे।
1: प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड का वर्ष 2026-27 के लिए करीब 14 करोड़ रुपए का बजट आज तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक में पारित किया गया। इस दौरान अभिषेक जैन ने बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में पढ़ाए जाने वाले बहुतकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम को समय समय पर संशोधित करने और नवीनतम विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने को भी कहा। शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सांसद सुरेश कश्यप को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता कर्ण नंदा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जाखू, यूएस क्लब, बैनमोर और कनलोग क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को वाहन परमिट से राहत दिलाने की मांग की। उन्होंने इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए दीर्घकालिक रेजिडेंट पास जारी करने, परमिट शुल्क में तर्कसंगत कमी और प्रतिबंधित मार्गों से संबंधित नियमों में छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल करने का आग्रह किया। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8,50,000 लोगों ने अपना पता अपडेट करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया है। ऐप के जरिए एक ही क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कई महाविद्यालयों को बंद करने के फैसले को बताया जनविरोधी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने HP शिवा परियोजना के तहत संतोषजनक कार्य न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत भरपूर मदद दे रही केंद्र सरकार। और मिड डे मील वर्कर्स का शिमला में प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
4: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
5: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
4: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना मंडी सदर हिमाचल प्रदेश की पंचायत नगर निगम परिषद वार्डों के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पद को भरने हेतु इच्छुक स्थानीय महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरकार द्वारा 10,500 रुपये एवं सहायिका को 5,800 रुपये व समय समय पर निर्धारित दर पर प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इन पदों के लिए पात्रता इस प्रकार से होगी।

0: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र है। प्रार्थी की आयु अधिसूचना जारी होने की तारीख को 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग में हो। प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे परिवारों की सूची यानी फीडर एरिया में दर्ज हो। प्रार्थी के परिवार की सालाना आय 50,000 रुपये से अधिक ना हो। वह इस संबंध में आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु प्रार्थी का 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन कर सकती है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित दिनांक 4 जुलाई 2026 तक कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवाए तथा साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत रूप से मूल दस्तावेजों सहित उपमंडलाधिकारी सदर जिला मंडी के कार्यालय में दिनांक 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होना होगा। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: FM बैंड 103.4 में हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे लीजिए प्रस्तुत है विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नुसरत फतेह अली खान को।

0: मई धमाका आ गया है। अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस मे ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम आगे लीजिए, सुनिए जगजीत सिंह की गाई हुई ये गजल।

श्रोताओं, ये पंजाबी गीत आपने सुना नूर जहां की आवाज़ में। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये पंजाबी गीत।

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशगान। कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत लीजिए सुनिए मन्ना डे का गाया हुआ और जिसे हमने लिया है फिल्म उसने कहा था से।

0: श्रोताओं, ये देशभक्ति गीत आपने सुना सोनू निगम और साथियों का गाया हुआ, जिसे हमने लिया था फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला।

0: होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात

0: की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाईं। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए 68 पैसे पर बंद हुआ।
0: अंत में

मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In Group J fixture tonight at Arlington in US, the match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। श्रोताओं, आज के हमारे जो संगीतकार हैं वे हैं अमित त्रिवेदी। श्रोताओं, अमित त्रिवेदी भारतीय फिल्म संगीत के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक हैं। उनका जन्म 8 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर, विज्ञापन और स्वतंत्र संगीत परियोजनाओं से की और 2008 में फिल्म आमिर से बॉलीवुड में बतौर संगीत निर्देशन का कार्य किया।

श्रोताओं, अमित त्रिवेदी ने अपनी पहचान सन 2009 में फिल्म देवडी के संगीत से बनाई। जिसमें उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का अवार्ड मिला। उनकी संगीत शैली में लोक गायन और लोक संगीत, रॉक म्यूज़िक, सूफी, इंडी, शास्त्रीय और आधुनिक धुनों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, जिसमें आप सुनेंगे हिमाचली गीत और लोकगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए हेत राम तनवर को।

माफ़ कीजिए श्रोताओं, इस लोकगीत को गाया था मंजू चिश्ती और साथियों ने। कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए ओम प्रकाश का गाया हुआ ये लोकगीत।

श्रोताओं, ये लोकगीत आपने सुना सुरेश चौहान का गाया हुआ। कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए मान सिंह का गाया हुआ ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे, जिसमें आप सुनते हैं अपनी पसंद के कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, आप भी हमें फ़ोन करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01892224391। और जो फिल्में हमने रखी हैं उन फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। और फिल्मों के नाम हैं आनंद, आराधना, असली नकली, बाजार, दीवार, एक फूल दो माली, गाइड, जब प्यार किसी से होता है, जीने की राह, ज्वेल थीफ, कभी कभी, नमक हराम, नील कमल, प्रेम पुजारी, सफ़र वापस, और ये गुलिस्तां हमारा। तो श्रोता हमें फ़ोन करें और अपनी पसंद का गीत ज़रूर सुनें और हमसे बात भी करें। स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391, 01892224391।

0: फिल्मों के नाम आपको एक बार फिर बता दें और कार्यक्रम में आप हमें फोन कर सकते हैं। और फिल्मों के नाम हैं आराधना, आनंद, असली नकली, बाजार, दीवार, एक फूल दो माली, गाइड, जब प्यार किससे होता है। और लेते हैं कार्यक्रम की पहली फोन कॉल। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पिंटू बोल रहा हूँ जी, बिलोल से। हेलो
0: जी,
1: जी, पिंटू बोल रहा हूँ बिलोल से जी। मैं
0: आ रही है आपकी आवाज़। फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: कौन कौन सी फिल्म है सर जी?
0: आराधना, आनंद, असली नकली, बाजार, दीवार, एक फूल दो माली, गाइड, जब प्यार किससे होता है, जीने की राह, ज्वेल थीफ, कभी कभी, नमक हराम, नीलकमल। हाँ जी, बोलिए
1: जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गाना सुना देना सर जी। जी,
0: जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं कारपेंटर का काम करता हूँ।
0: जी। और रेडियो निरंतर सुनते हैं?
1: हाँ जी, लगातार सुनते हैं रेडियो, सुबह से शाम तक
0: जी, मतलब जो जब आप काम करते हैं तब भी रेडियो लगा होता है।
1: जी। हाँ जी,
0: जी, कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद।
1: थैंक यू सर जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम
1: नमस्कार सर,
0: पे
1: मैं त्रिवेणी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: सर आप अपने तरफ से निकालें कि मैं अपने तरफ से बताऊं?
0: नहीं, हमने अपनी तरफ से निकाले हैं।
1: तो बताइए सर, कौन कौन से फिल्म सर?
0: आनंद आराधना, असली नकली बाजार, दीवार, एक फूल दो माली, गाइड, जीने की राह, ज्वेल थीफ, कभी कभी नमक हराम, नीलकमल, प्रेम पुजारी, सफर वापस, और ये गुलिस्ता हमारा।
1: असली नकली का पुराना पिक्चर गाना है सर, लाख छुपाओ छुप न
0: जी
1: सकेगा,
0: जी
1: राज
0: जी
1: इतना गहरा, गायिका लता मंगेशकर।
0: आप बताइए, आप क्या करते हैं?
1: जी सर,
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं एसएससीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ और
0: जी
1: नौकरी पीरियड में ही कई कई केंद्रों में फोन करता हूँ, रिकॉर्डिंग में, लाइव में, ईमेल में जुड़ता हूँ
0: जी जी
1: और यही इतना 6 बजे करीब आता हूँ,
0: जी
1: मतलब 4:15 बजे आता हूँ, 6 बजे करीब कई केंद्रों में जुड़ता
0: जी बहुत ही अच्छी बात है जी। कार्यक्रम में आपने इतनी दूर से फोन किया, आपका शुक्रिया।
1: हूँ। फैमिली की सर आपको भी

0: हेलो, फोन लाइन जो है कट चुकी है और हमारा श्रोताओं से निवेदन है कि थोड़ा सिग्नल में रहकर हमेशा बात करें। लेते हैं कार्यक्रम की अगली फोन कॉल।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्कार
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: सर।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से।
0: अनवर बिहारी जी, फरीदाबाद हरियाणा से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्म का नाम बता दीजिए पहले।
1: फिल्म अनमोल घर या आवाज नूर जहाँ की।
0: हमने अपनी फिल्में रखी हैं, उनमें से जैसे वापस, सफ़र, प्रेम पुजारी, ये गुलिस्ता हमारा, नीलकमल, नमक हराम, कभी कभी, ज्वेल थीफ, जीने की राह, गाइड, एक फूल दो माली, दीवार, बाजार, आनंद और आराधना।
1: इतने सारे गाने लेकर आप एक साथ आ गए हैं आज।
0: जी, फिल्मों के नाम हैं, इनमें से एक गाना चलेगा, 1 घंटे का कार्यक्रम है।
1: नील कमल का बजा दीजिए।
0: और क्या करते हैं आप?
1: आया तुझको पुकारे मेरा प्यार।
0: जी,
1: मैं
0: वो
1: फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ, रहने वाला हूँ बिहार का।
0: जी,
1: आया
0: और
1: पकड़ के मुझको दोजख साहो सूल, ऑर्डर हुआ कि भेज दो वापस बिहार में।
0: जी,
1: लड़की है पोस्ट ग्रेजुएट, लड़का है ऊंट अछाप, कैसे पचेगी अब तो जोरू बतार में। और जब से गया है सऊदी, बेगम को देख लिए, रहने लगी है अब तो और भी ज्यादा सिंगार
0: शायरी भी करते हैं आप?
1: में। जी, गजब
0: जी
1: का मुस्कुरा

0: है जब वो आईना दिखाता है, जमाने को दिखाने को वो सीने से लगाता है, उधर जाता है जब सावन तो नामा मेरे घर में आता है, जरा सी बात का वो मेरे अफसाना बनाता है।
1: जी जी बहुत अच्छा, ये खुद लिखते हैं आप?
0: जी हाँ खुद भी लिखता हूँ, थोड़ा इधर उधर से भी याद हो जाता है मुझे।
1: जी जी बहुत ही बढ़िया बात है, सुनवा रहे हैं नील कमल फिल्म से ये गीत, और आपके साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: शुक्रिया, नवाज़।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ जी हेलो।
1: अरे भाई जी नमस्कार। बहुत
0: नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाइए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे।
0: जी,
1: और सुनाइए क्या हाल चाल है।
0: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाएं
1: चलो बहुत बढ़िया रहना चाहिए। उस भगवान की कृपा से जो
0: जी।
1: जीवन के शेष दिन बचे हैं उसको हंस खेल करके अपने बड़ी बढ़िया तरीके से बातचीत कर रहे हैं।
0: जी,
1: कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। उस
0: बिल्कुल
1: भगवान की कृपा से जो भगवान ने हमको यह जिंदगी दी है, अपना शरीर दिया है, उसी को लेकर के हम भगवान की कृपा से चल रहे हैं। बाकी आपकी लोगों की दुआ से और भगवान की दया से जीवन चल रहा है।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात है ये, और ऐसे होना भी चाहिए, हमेशा स्ट्रेस से दूर
1: बिल्कुल
0: रहना चाहिए। आपने संदेश भी दे दिया हमारे श्रोताओं को। और पहले आप फिल्म का नाम बता
1: बिल्कुल
0: दीजिए
1: बिल्कुल।
0: कि
1: जिंदगी में देखिए, अगर आज इस वक्त रात है तो कल सुबह भी होगी।
0: जी।
1: अगर दुख आएंगे तो सुख भी आएंगे। अगर
0: जी
1: आंधी है, तूफान है, तो फिर बहुत बढ़िया दिन भी चलेगा।
0: जी बिल्कुल
1: घबराना नहीं, जीवन में कभी भी किसी भी तरीके से जीवन में कोई भी कठिनाई आए उसको अपने अपने मैन पावर से, मतलब विल पावर से उसको तरीके से हंडाओ।
0: जी।
1: मैं के क्या होता है अपने पंजाबी जी का मजा, अपने जिया
0: पंजाबी जी बोल दो
1: जिया करेगा ना कि
0: जी।
1: वो जितना भी आवे ना जिंदगी से,
0: जी
1: उन्होंने जिंदगी हर तरीके दे नाल उन्होंने निपटाना चाहिए।
0: जी
1: ये
0: जी
1: नहीं घबराना नहीं चाहिए भी मैनू हुण दुख आ गया ते वो हो गया।
0: जी
1: नहीं, जब भी जो भी आए ना,
0: जी बिल्कुल
1: बाकी है कि कुछ हमारे आपने अपने लोगों के हमारे अपने कुछ कर्तव्य हैं। देखिए हम वृक्ष काट रहे हैं, पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, तो
0: जी
1: जो पर्यावरण बिगड़ रहा है तो उससे हमको ही नुकसान हो रहा है।
0: जी
1: देखिए
0: और
1: हम अपने लालच के लिए खेतों में कितना फर्टिलाइजर, कितना खाद, कितना बीज, कितना कुछ उस डाल रहे हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर ही उसका असर हो रहा है ना। तो
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: हम अपने लालच के लिए कभी भी लालच जिंदगी में ना मत करें।
0: जी
1: जो भी है भगवान ने देना है तो आपको थोड़े में ही बहुत हो जाता
0: जी बिल्कुल अच्छी बात कही आप। फिल्म का नाम बता दीजिए, कई बार क्या होता है कि फोन कट
1: है।
0: जाता है।
1: फिल्म देखिए, एक मिनट मेरे को याद भूल गया। फिल्म कौन कौन सी है गौरव जी?
0: ये गुलिस्ता हमारा, वापस सफर, प्रेम पुजारी, नमक हराम, कभी कभी, ज्वेल थीफ, जीने की राह, गाइड, एक फूल दो माली, दीवार, बाजार।
1: हाँ, एक फूल दो माली का,
0: जी,
1: कि उसमें एक गाना तो है ना कि मेरा लाल करेगा तू चंदा, सूरज कौन चंदा।
0: जी
1: एक है कि किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया।
0: किस्मत के खेल निराले मेरे भैया
1: हाँ, वो गाना सुना दीजिए।
0: जी, रवि जी की आवाज़ में। और रवि जी वैसे संगीतकार थे, लेकिन उन्होंने इसमें गाना गाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, वो सुना दीजिए। ठीक
0: जी, कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद।
1: है गौरव जी, न धन्यवाद, शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो गौरव, नमस्कार
0: नमस्कार जी। नाम बता
1: सर।
0: दीजिए अपना।
1: मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव घट्टा से चांद राम बोल रहा हूँ सर जी।
0: चांद राम जी, घट्टा से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और पहले फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: सर जीने की राह फिल्म का गीत है जो आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, वो हमें जीने की राह सिखाता है हमेशा जिंदगी में। मैं
0: जी
1: चाहता
0: जी
1: हूँ कि जीने की राह फिल्म का गीत अगर आप सुना देंगे तो हमारी जिंदगी में और भी राह हो जाएगी सर जी।
0: ये बहुत ही बढ़िया बात की आपने। और क्या चल रहा है आजकल?
1: जी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं सर।
0: खेती बाड़ी आजकल क्या बीज रहे हैं?
1: टमाटर की खेती कर रहे हैं भाई जी। जी
0: मैं आप टमाटर ही लगाते हैं सिर्फ?
1: जी
0: जी। और हमारे कार्यक्रम सुनते हैं रोज़?
1: बिल्कुल सर, कई घर से बाहर निकल जाएं तो ऐप के माध्यम से सुनते हैं,
0: जी
1: वैसे खेतों में रहते तो रेडियो के माध्यम से सुनते हैं।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है। और आपकी तरफ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं?
1: बिल्कुल सर, बारिश आज थोड़ी सी बारिश हुई हमारे गांव में, पर
0: जी,
1: कल थोड़ा ठीक था मौसम।
0: यहाँ धर्मशाला में कम बारिश हो रही है।
1: आपके वैसे होनी चाहिए थी बारिश, धर्मशाला तो खराब
0: अब धर्मशाला
1: कर दी
0: वैसा
1: सर।
0: धर्मशाला नहीं रहा
1: जी
0: जी।
1: बहुत ही अच्छी आवाज़ है सर आपकी, मैं डेली सुनता हूँ आपको।
0: जी, धन्यवाद आपका। और हमारे श्रोता हैं आप, और निरंतर सुनते हैं और हमें खुशी होती है।
1: सर मैं 19 जून 1997

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना।
1: गुरमेल सिंह जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं गुरमेल जी?
1: इसी रोंगटर।
0: रोंखड़, ये अपने पास में
1: हाँ जी,
0: जी। बहुत ही अच्छी बात है। और रोंखड़ के क्या हाल हैं
1: बढ़िया सर,
0: जी? हेलो,
1: बहुत अच्छे हैं सर।
0: क्या करते हैं आप?
1: बुक बाइंडिंग।
0: बुक बाइंडिंग का काम है
1: हाँ जी,
0: रोंखड़ में ही?
1: नहीं नगरोटा में।
0: नगरोटा, ये भगवान
1: हाँ जी,
0: जी। तो अपनी दुकान है?
1: नहीं जी, किसी के पास करते हैं काम। हाँ
0: अच्छा, किसी के पास करते हैं। और बताइए, फिल्म का नाम,
1: जी,
0: फिल्म का नाम बताइए।
1: कभी कभी
0: कभी कभी। और क्या चल रहा है आजकल?
1: बढ़िया सर, खेती बाड़ी का काम चल रहा है।
0: बारिश तो हो नहीं रही है, तो कैसे कर रहे हैं?
1: ओ, जेल डाली हुई है, उसको बदल रहे हैं दोबारा।
0: अच्छा। और हमारे प्रोग्राम सुनते हैं आप? रोंगखड़ से पहली बार फ़ोन किया, मतलब

0: मुझे ऐसे किया हुआ।
1: और फोन करते रहते हो, वो आता ना आपका जो प्रोग्राम हेलो धर्मशाला या वगैरह वगैरह आता रहता है,
0: हाँ
1: आप
0: जी
1: दूसरे फोन करते हो
0: अच्छा, बात होती है कि नहीं हुई पहले?
1: पहाड़ी
0: हाँ
1: पहाड़ी को मैं करते हो।
0: जी,
1: हाँ जी, तो
0: बात हुई पहले आपकी कि पहली बार लगा फोन?
1: आप पहली बार कर रहे हो, मिसिस से कई बार हुई है।
0: अच्छा, ठीक है जी। तो कभी कभी का आपको गीत सुनाते हैं, कौन सा
1: कौन
0: गीत
1: सा गीत?
0: सुनेंगे कभी कभी का?
1: हाँ जी, सारे
0: कभी कभी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ऑलराउंडर गाने हैं, जो मर्जी सुना दो आप उसका।
0: ठीक है जी, कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद
1: धन्यवाद सर, आपका भी।
0: जी।

0: हमारा श्रोताओं से निवेदन है कि वो सिग्नल में रहकर हमें फ़ोन करें, और हमारे स्टूडियो का नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01892224391। लेते हैं कार्यक्रम की अगली फ़ोन कॉल।
1: हाँ जी
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। फिल्म का नाम बता दो पहले
1: फिल्म का नाम कोई अपनी पसंद का सुनवा दीजिए।
0: जी। आप

0: अपना नाम
1: बोलिए।
0: बताइए। फ़ोन कट गया है और हम पहले ही बता चुके हैं कि सिग्नल में रहकर बात करें, और कई बार आधे घंटे के कार्यक्रम के बाद फ़ोन लाइन कटना शुरू हो जाती है। पता नहीं ये कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है या क्या है। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी अपनी पसंद का गीत सुना दें। इनको सुनवा रहे हैं वापस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

हेलो हेलो हेलो, सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। सिग्नल में रहकर बात करें, हमारा श्रोताओं से निवेदन है कि वो जब भी फ़ोन करें तो सिग्नल में रहकर ही बात करें। हेलो हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।

लेते हैं कार्यक्रम की अगली फोन कॉल। हेलो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे, और श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01892243 91। हेलो,

आवाज नहीं आ रही है जी आपकी। हमारा श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि वो जब भी हमें फोन करें तो अपना सिग्नल चेक कर लें फोन का। हेलो, नमस्कार जी, आवाज क्लियर नहीं है सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। और तब तक जब तक सिग्नल ठीक होता है, जहाँ हम कोशिश करते हैं आपसे संपर्क हो जाए और आप हमें सिग्नल में रहकर ही हमें हमसे बात करें। हेलो हेलो हेलो। तो श्रोताओं, जब तक कार्यक्रम तो हमारा चला ही है और आप हमें फ़ोन करते रहिए, लेकिन तब तक सुनिए ये गुलिस्ता हमारा, फिल्म से ये गीत।

0: हेलो
1: लड़की
0: हेलो
1: लड़की मुस्कान
0: जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हमारा श्रोताओं से निवेदन है, जब भी फ़ोन करें सिग्नल में रहकर ही करें। तो आपको सुनवाते हैं अब फिल्म दीवार से ये गीत, जिसे गाया है मन्ना डे ने।

हेलो हेलो हेलो जी, अब कार्यक्रम का समय भी हो रहा है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो अगली बार ज़रूर फ़ोन करें। और आखिर में हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को अपनी तरफ से आराधना फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है ST बर्मन ने।

0: FM-बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज

0: दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। People, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident.